FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 23 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका

0: जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं श्रम का महत्व विषय पर विचार।
3: एक बार अकबर और बीरबल टहलते हुए नगर के बाहर एक पहाड़ी इलाके में चले गए। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। अकबर को चलने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक किसान कंकड़ पत्थर पर भी बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने कहा, उस आदमी को देखो बीरबल, ऐसे कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा है और वो आदमी बड़े मजे से सो रहा है। ताज्जुब है कि उसे नींद कैसे आई। इस पर बीरबल बोले, ताज्जुब की कोई बात नहीं है, इसका रहस्य जानने के लिए इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। कुछ दिन इसे राजमहल में रखकर उसकी निगरानी करेंगे, तब पता चलेगा कि इसे कंकड़ पत्थर पर नींद कैसे आती है। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले आए। वहां उसको सारी सुविधाएं दी गईं। सोने के लिए नरम गद्दा दिया गया, उसको कोई काम भी नहीं दिया गया। लेकिन किसान को कभी ढंग से नींद नहीं आई। तब

0: बीरबल ने उसके बिछावन के नीचे छोटे छोटे पत्थर रखवा दिए और ऊपर से चादर बिछवा दी। सबको लगा कि किसान को कंकड़ पर सोने की आदत है, इसलिए आज रात उसे अच्छी नींद जरूर आएगी। पर उस रात भी किसान करवटें बदलता रह गया। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, आप जिस बात को लेकर ताज्जुब कर रहे थे उसकी सच्चाई सामने है। ये आदमी न तो आरामदायक गद्दे पर सो सका और न ही कंकड़ भरे बिछावन पर। अकबर ने पूछा, इसका कारण क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो आदमी कड़ी मेहनत करता है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, वो कहीं भी सो सकता है, कंकड़ पत्थर पर भी और नरम गद्दे पर भी। हमने सोचा कि इस किसान को पत्थरों पर सोने की आदत है, पर ऐसा नहीं है। श्रम न करने की वजह से ये कंकड़ भरे बिछावन पर भी नहीं सो सका। अकबर समझ गए कि अच्छी नींद का संबंध श्रम से है। श्रम के संबंध में ही प्रसिद्ध विचारक लेनिन से जुड़ा एक प्रसंग है। बात उस समय की है जब मॉस्को कजान रेलवे कई जगह से टूटी पड़ी थी। रूसी मजदूरों ने उस वक्त अपनी शनिवार की छुट्टी को, जो कानूनन उन्हें मिलती थी, स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उस दिन भी वे काम पर आते थे। लेनिन उनके अगुआ थे। वे कहते थे, श्रम समाज निर्माण के लिए होता है, वो किसी इनाम या पुरस्कार की इच्छा से नहीं बल्कि बहुजन हिताय अर्पित किया जाता है। उन दिनों लेनिन के गले में तकलीफ थी और वे बहुत कष्ट में थे। फिर भी लेनिन इस कष्ट की परवाह न करते हुए मजदूरों का साथ देने के लिए स्वयं अपने कंधों पर लट्ठे उठाकर सुबह से शाम तक काम में जुटे रहते थे। मजदूर मना करते और कहते कि आप कोई हल्का काम लें, किंतु लेनिन नहीं मानते। साल भर तक इसी प्रकार अपने अवकाश के दिनों को बिना किसी इनाम या मजदूरी के उन श्रमजीवियों ने व्यय किया और लेनिन ने भीषण शारीरिक कष्ट के बावजूद उनका साथ दिया। तब ये कार्य संपूर्ण हुआ और लेनिन ने कहा, मजदूरों का यह त्याग एक महत्वपूर्ण घटना है। श्रम की महिमा दर्शाता ये प्रसंग उन कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्पद है जो काम करने के लिए सप्ताह में 5 दिन ही तय करने की मांग करते हैं और उन 5 दिनों में से भी आधा दिन अपने निजी काम निपटाते रहते हैं।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे श्रम का महत्व विषय पर विचार। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली अर्थात जग जननी माँ इस धरा पर एक ऐसी शक्ति स्वरूपा हैं जिन्हें सभी आदि शक्ति माँ के रूप में पूजते हैं। माँ के अनगिनत रूप और नाम हैं। माँ के जिस भी रूप को ध्याया जाए माँ सभी का कल्याण करती है।

गीता का ज्ञान अमृत वाणी के समान है, जो हमारे जीवन को सही दिशा, शांति का उपदेश प्रदान करता है।

जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से तपती संपूर्ण धरा को वर्षा की बूंदें आनंद प्रदान करती हैं, उसी प्रकार राम नाम का सुमिरन हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। राम नाम का सुमिरन जीवन में शांति, सकारात्मकता और भय से मुक्ति लाता है।

माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है, माँ तेरे आशीष में प्रेम है, माँ तेरी भक्ति में शक्ति है, माँ तेरी आराधना में शांति है।

हम करें जग कल्याण प्रभु ऐसा दो वरदान, दुख दूर करें सबके जन जन को सुखी बनाएं, भय मुक्त करें सबको धरती को स्वर्ग बनाएं, हम बने उच्च महान प्रभु ऐसा दो वरदान, रिपुता रहे न मन में सबको हम मित्र बनाएं, कर सेवा मानवता की जीवन को सफल बनाएं, हमको दो ऐसा ज्ञान प्रभु, हमको दो ये वरदान प्रभु।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, शर्मा बंधु, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की गाई भक्ति रचनाएं सुनी।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है आज की बात का। नमस्कार श्रोताओं, आज की बात के अंक में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। आज है 24 मई। आइए नज़र डालते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो आज के दिन घटित हुई थीं। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 24 मई साल 1544 में जन्म हुआ था चुंबकीय शक्ति में पहली बार रिसर्च करने वाले विलियम गिलबर्ट का। विलियम गिलबर्ट ने बतौर फिजिशियन अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद वे महारानी एलिजाबेथ प्रथम और राजा जेम्स प्रथम की सेवा में लग गए। विलियम गिलबर्ट ने लॉज ऑफ अट्रैक्शन की खोज की थी और दुनिया को चुंबक के महत्व के बारे में बताया था। इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी विद्युत और चुंबकत्व का जनक भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। श्रोताओ, आज ही के दिन 1686 में दुनिया को मरकरी थर्मामीटर देने वाले पोलैंड के वैज्ञानिक डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट का जन्म हुआ था। मरकरी थर्मामीटर में तापमान को मापने के लिए पारे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आविष्कार से पहले आमतौर पर थर्मामीटर में मरकरी की जगह एल्कोहल का प्रयोग होता था। श्रोताओ, बांग्लादेश के लेखक, कवि और संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम का जन्म आज ही के दिन साल 1899 में हुआ था। उनकी कविताओं में हिंदू मुस्लिम तहजीब की झलक मिलती है। उन्होंने 4000 से भी ज़्यादा गीत लिखे,

जिन्हें नज़रुल गीति के नाम से जाना जाता है। काजी नज़रुल इस्लाम ने भगवान शिव, लक्ष्मी, सरस्वती और राधा कृष्ण को समर्पित कई भजन भी लिखे थे। श्रोताओ, भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की आज पुण्यतिथि है। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश में जन्मे मजरू सुल्तानपुरी के लिए लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी। साल 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए उन्होंने जब दिल ही टूट गया गीत लिखा, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद मजरू साहब ने फिल्म अंदाज, साथी, पाकीज़ा, तांगे वाला, धर्म कांटा, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, बम्बई का बाबू, तीन देवियां, ज्वेल थीफ और अभिमान आदि फिल्मों के गीत लिखे। इन्हें साल 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओ, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का जन्म आज ही के दिन यानी 24 मई साल 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता रोशन भी एक दिग्गज संगीतकार थे और इनके बड़े भाई राकेश रोशन जाने माने अभिनेता और निर्देशक हैं। साल 1975 से अपना करियर शुरू करने वाले राजेश रोशन ने लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान जूली गीत से मिली। इस गीत ने उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिलाया था। राजेश रोशन की मुख्य फिल्में हैं कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, पापा कहते हैं, कहो ना प्यार है, कृष और काबिल। और श्रोताओ, हर साल आज ही के दिन यानी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस अर्थात कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्तर पर मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में ये दिवस 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। ये दिन उन 56 स्वतंत्र देशों के संगठन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच शांति, समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसे पहले एम्पायर डे के नाम पर जाना जाता था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य सभी सदस्य देशों के लोगों को एकजुट करना, साझा मूल्यों को का सम्मान करना, वैश्विक भाईचारे और मानवता को प्रोत्साहित करना है। तो श्रोताओ, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

समूह स्वर में अभी आपने सुना देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विविधा।

विविधा के आज के अंक के साथ मैं हूँ पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस की। भाई का साथ होता है खास, भाई के साथ से हर मुश्किल में बनता है विश्वास। श्रोता, भाई वो होता है जो परिवार में हमारे साथ प्यार, सहयोग और सुरक्षा का रिश्ता निभाता है। भाई बड़ा हो या फिर छोटा, वो हमारे जीवन में सच्चा दोस्त और साथी बन सकता है। एक भाई मुश्किल समय में हमारी मदद करता है, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देता है और परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाता है। भाई के इसी मजबूत रिश्ते को समर्पित है आज का ये दिन। हर साल आज ही के दिन यानी 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस यानी इंटरनेशनल ब्रदर्स डे भाइयों के बीच के अनूठे बंधन, उनके प्यार और उनके महत्व को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2005 में अमेरिका से हुई थी, जिसे सी. डैनियल रोड्स ने शुरू किया था।

कि ये दिवस पश्चिम देशों का त्यौहार है, लेकिन भारत में भी सोशल मीडिया और युवाओं के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। भारतीय संस्कृति में भाई के रिश्ते को सर्वोपरि माना गया है। भाई के स्नेह प्यार से सभी के जीवन में अपनापन और मधुरता आती है। भाई हमारे जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जो बचपन से लेकर पूरे जीवन तक हमारे साथ रहता है। वो केवल परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि हमारा पहला दोस्त, साथी और रक्षक भी होता है। भाई के साथ बिताया बचपन हंसी, खेल, शरारत और यादों से भरा होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमारा पहला साथी हमारा भाई। अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस हर वर्ष भाइयों के प्रेम, सहयोग और त्याग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। भाई हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता है और कठिन समय में सहायता करता है। चाहे भाई बड़ा हो या फिर छोटा, दोनों का अपने जीवन में विशेष महत्व होता है। बड़ा भाई हमेशा सही रास्ता दिखाता है, हमारी गलतियों को सुधारता है और प्रेरणा देता है। वहीं छोटा भाई घर पर खुशी और उत्साह लेकर आता है। भाई के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार कभी भी कम नहीं होता। जब हम दुखी होते हैं, तब भी भाई हमें हंसाने और मनाने की कोशिश करता है और मुश्किल समय में हर समय हमारे साथ खड़ा होता है। आज के समय में लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों को समय देना कम हो गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस हमें अपने भाई के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। आज के दिन लोग अपने भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं, उपहार देते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। हमें अपने भाई के साथ हमेशा प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भाई का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने वाला रिश्ता होता है। सचमुच हमारा पहला साथी और सच्चा मित्र हमारा भाई होता है। अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस 2026 की थीम है सेलिब्रेटिंग द बॉन्ड, जो भाई बहनों के बीच प्यार और अनूठे रिश्ते को समर्पित है। तो श्रोताओ, ये था आज का विविधा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचने इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधान

0: आनाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्ष पर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत

0: आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे रविवासरी संगीत सभा कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित हरशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। आज प्रातः 7:40 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अर्थराइटिस कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर श्रुति अग्रवाल से की गई संजय जोशी की भेंटवार्ता। सुबह 8:30 पर बाल वाटिका कार्यक्रम में आज चर्चा होगी गंगा दशहरा पर, विश्व फुटबॉल दिवस, कवि विनायक दामोदर सावरकर, हिंदी पत्रकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो विषयों पर। घर संसार कार्यक्रम में आज दिन में 12:30 पर बहनों से चर्चा होगी कुछ नया सीखें विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी हर दिन छोटी छोटी खुशियां तलाशें विषय पर श्रीमती गीता मेहरा से गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित बातचीत। खेती की बातें कार्यक्रम में अपराह्न 2:30 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर पूरन सिंह मेहता की वार्ता, विषय होगा सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होंगी अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं और राष्ट्रमंडल दिवस पर। शाम 5:15

45 मिनट पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे अंत्योदय अन्न योजना, मिशन लाइफ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनेगा कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में आज का विषय होगा प्रमुख खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर गौरव वर्मा और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कार्की। शास्त्रीय संगीत सुनेगा सुबह 11:30 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा सबरंग सुबह 10:05 पर। सबरस रात 8 और सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर और रात्रि 9:30 पर। रूप कुमार राठौर और जसपिंदर नरूला की गायी भक्ति रचनाओं का आनंद आप ले सकते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में संध्या 6:41 पर। कुमाऊनी लोकगीत सुनेगा लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलसर में शाम 5:05 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे गीत निर्झर कार्यक्रम में सुबह 9:05 पर। सुबह 10:35 पर होगा सुरबहार कार्यक्रम। सुबह 11 आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन में 12 मेरी पसंद कार्यक्रम। अपराह्न 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम होगा। अपराह्न 3 सदाबहार फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते हैं। शाम 7:40 पर सुनेगा फिल्म संगीत कार्यक्रम और आज रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से भाग 103। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं अब प्रादेशिक समाचार, हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती। आनंद स्वरूप बने गढ़वाल आयुक्त। आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कुल संख्या 20,00,000 के पार पहुंची। और देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। शासन ने प्रदेश में आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के कुल 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इनमें 19 आईएएस, 8 पीसीएस और 2 सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। शासन के आदेश के अनुसार आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को सचिव नियोजन बनाया गया है और उनकी जगह आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी बनाया गया है और स्मार्ट सिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को वर्तमान दायित्वों के साथ सचिव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि आकांक्षा कोंडे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और निदेशक कर्मचारी बीमा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। नमामि बंसल को नगर आयुक्त देहरादून के पद से हटाकर अपर सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है। उनकी जगह आलोक कुमार पांडे को नगर आयुक्त देहरादून बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के डीएसवी परिसर में कुलपति और विभिन्न संकाय अध्यक्षों के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और कौशल विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की मुख्य धुरी हैं और शिक्षकों की भूमिका केवल पाठ ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करना भी जरूरी है।

0: दी है। बैठक में राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम समयानुकूल और रोजगार उन्मुख होने चाहिए ताकि विद्यार्थी नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान और नवाचार में भी दक्ष बन सके। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप, प्रयोगात्मक शिक्षा, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भूविज्ञान विभाग और शैक्षणिक उपलब्धियों, रसायन विज्ञान विभाग के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों और नौसेना NCC गतिविधियों की सराहना की। चमोली जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के सहयोग से संचालित इस परियोजना के माध्यम से पशुपालकों, किसानों और हस्तशिल्पियों की आजीविका को मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना जिले के करीब 29,000 परिवारों की आय बढ़ाने में सहयोग कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ही व्यक्तिगत उद्यम और CBO स्तर की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वो अपने घरों पर ही स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके जरिए डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि आधारित गतिविधियों, टेलरिंग, आटा चक्की, मधुमक्खी पालन, रिंगाल हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक शशिकांत यादव ने बताया कि अब तक जिलों में 880 लाभार्थियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा फार्म आधारित व्यक्तिगत उद्यमों के तहत 327 और नॉन फार्म आधारित उद्यमों के तहत 278 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि जिले में CBO और FPO स्तर पर भी कई उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुछ इकाइयों पर कार्य अभी प्रगति पर है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आर्यनगर वार्ड स्थित साकेत कॉलोनी में 9,05,80,000 रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने लंबे समय से चली आ रही सीवरेज समस्या के समाधान की दिशा में इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने MDDA की ओर से कैनाल रोड स्थित एकता एवेन्यू पार्क में करीब 19,37,000 रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण कार्यों का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साकेत कॉलोनी की सीवरेज योजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि योजना पूरी होने के बाद स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और जलभराव की समस्या में कमी आएगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों धामों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और यात्रा लगातार सुचारू रूप से जारी है। शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 96,116 श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए। इसके साथ ही कुल श्रद्धालुओं की संख्या 20,76,000 के पार पहुंच गई। अब तक केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 8,11,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 5,56,000 से अधिक, गंगोत्री में 3,52,000 और यमुनोत्री धाम में 3,56,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मौसम खराब होने की स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन 6,605 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। स्वर्गीय अमृतलाल गुप्ता की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में विद्यालय के पूर्व छात्र और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, सैन्य अधिकारी और शहीद के परिजन मौजूद रहे। मेजर चंद्रशेखर मिश्रा ने वर्ष 1973 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश लिया था और वर्ष 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित हुए। इसके बाद वे भारतीय सेना की 14 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। वर्ष 1996 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन मधु सेंगर ने शहीद मेजर की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी पत्नी राजश्री मिश्रा सहित ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स के लिए आयोजित फॉरवर्ड एरिया टूर को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एटीयू के एनसीसी बटालियन के 20 कैडेट्स इस भ्रमण में शामिल हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य युवाओं को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारतीय सेना के सामरिक अभियानों की जानकारी देना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने से भी जुड़ा है। पंचशूल गनर्स द्वारा आयोजित यह भ्रमण हाल ही में 119 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। इसके तहत प्रौद्योगिकी, साइबर अध्ययन, सतत विकास और जनसंचार क्षेत्रों में सहयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती। आनंद स्वरूप बने गढ़वाल आयुक्त। आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कुल संख्या 20,00,000 के पार पहुंची। और देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन प्रभात 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में आज के गायक कलाकार हैं पूरन चंद्र पपना।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरन चंद्र पपना के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अर्थराइटिस कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर श्रुति अग्रवाल से की गई संजय जोशी की भेंटवार्ता।
1: सभी लोग किसी न किसी रूप में जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। अक्सर बातचीत में कहते हैं कि कोई कहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई कहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई गाउट बताता है अपने को। तो ये सब इस तरह के दर्द जो इस तरह के हम आर्थराइटिस कहते हैं, ये क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और लक्षण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर नगर अल्मोड़ा की डॉक्टर श्रुति अग्रवाल जी को। यहीं से शुरू करते हैं। पहले कई तरह की आर्थराइटिस लोग कहते हैं आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, आर्थराइटिस है क्या?
2: आर्थराइटिस है कि जो भी हमारा जोड़ों के दर्द होते हैं, तो किसी भी इन्फ्लेमेशन को हम आइटिस लगा के बोलते हैं
1: जी।
2: तो जोड़ों में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है तो हम उसको आर्थराइटिस बोल देते हैं। और आर्थराइटिस में कई तरह की चीज़ें आती हैं कि अगर हम एज के हिसाब से जाएंगे तो हमारे जो भी हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड होता है
1: जी,
2: वो उसमें ग्रीसिंग का काम करता है, तो हमारा जो भी जोड़ है वो स्मूथ चलता रहता है। अगर वो कभी साइनोवियल फ्लूइड हमारा धीरे धीरे उम्र के साथ घटता रहता है तो उसमें जो घर्षण पैदा होता है वो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर उत्पन्न करता है, तो उसकी वजह से जो है पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हॉटनेस आ जाती है उस जोड़ पर और वहाँ स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, तो इस तरह से वो दर्द होता है। या फिर कभी हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया
1: जी,
2: तो उसकी वजह से छोटे छोटे जोड़ से दर्द स्टार्ट होता है, वो गाउट की कंडीशन है, वात रक्त कहते हैं इसको हम आयुर्वेद में
1: जी।
2: और ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि अगर जैसे मीनोपॉज हुआ फीमेल्स में
1: जी,
2: तो उसके बाद कैल्शियम की कमी होने लगी और जो हमारी बोन्स हैं वो पोरस होने लगी, तो उसकी वजह से वहाँ पर बोन स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो उससे भी हमारी बोन्स की वजह से जो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं तो फिर पेन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड होती है, रूमेटॉइड में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी हमारे जोड़ों पर काम करने लगती है, मतलब जोड़ों का विरोध करती है वो, तो वहाँ पर वो उससे लड़ते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से उत्पन्न होता है, अपनी इम्यूनिटी की वजह से ही वो हार्म करने लगती है बॉडी को, तो उसकी वजह से जो आर्थराइटिस कहेंगे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है।
1: ऐसे भी कुछ केसेस है कि जवान लोगों बच्चों में भी इस तरह के शिकायतें आती है, उसका क्या कारण है?
2: हर उम्र के लोगों को, ऐसा नहीं है कि जोड़ों का दर्द केवल उम्र के साथ ही बढ़ेगा, किसी भी उम्र के लोगों को होता है, तो वो अधिकतर जो है आमवाद की कंडीशन जिसको मैं कह रही हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी ही हमारे शरीर का विरोध कर रही है, तो वो हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ये कंडीशन पाई जाती है जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,

0: तो उनको ये दिक्कत होती है, बचपन से भी हो सकती है, 10-12 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। गाउट की दिक्कत है, वो भी अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है ब्लड में तो उसकी वजह से गाउट की दिक्कत भी किसी एज में हो सकती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक एज के बाद ही होगी, 40+, 50+ ऐसे ही होगी।
1: मतलब उम्र के अलावा अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं, हम ये मान के चलें।
0: जी
1: तो हम देखते हैं कि कभी हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर जकड़न जैसा महसूस करता है और काफ़ी देर तक रहता है, या जब काफ़ी मूवमेंट के बाद ही वो जकड़न जाती है, और किसी किसी के मतलब तो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो ये इसके क्या कारण है?
0: आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे
1: जी
0: तो ये आम दोष का है। आम दोष बनना मतलब कि टॉक्सिन्स बन रहे हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा,
1: जी
0: और टॉक्सिन्स जो हैं हमारे ब्लड में हैं और वो हमारे शरीर को लेथार्जी बनाते हैं, या हमारे शरीर में ठीक से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, जो हमारा ब्लड है वो पूरा अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है, जगह जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ रही है। तो ये आम दोष का, जब अगर पाचन नहीं होगा तो ये परेशानी लगी रहेगी, और ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हमारे डाइट का और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है।
1: जी आमतौर पे एक चीज़ और बहुत कॉमन देखी जा रही है आजकल, लोग कहते हैं जोड़ों के दर्द के अलावा वो कहते हैं कि हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो ये भी क्या इसी तरफ की कोई बीमारी है?
0: ये सब जो है आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से है कि हमारा जो दिन भर के कार्य हैं, हम एक जगह बैठकर बिल्कुल इमोबाइल होकर इस तरह की जीवन शैली को हम व्यतीत कर रहे हैं, हमारा हर काम मशीन से हो रहे हैं, कितनी जगह हम लिफ्ट से यूज़ कर रहे हैं,
1: जी
0: गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, तो इसने इन जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इन सब की वजह से जो फ्रोजन शोल्डर कहना, या उसको कहेंगे कि हमारा ये कंधा मूवमेंट प्रॉपर नहीं है,
1: जी
0: उसको ही बोलते हैं कि फ्रीज हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। तो अगर हम किसी भी जोड़ को चलाएंगे नहीं तो, या हमारी कोई भी मशीनरी है अगर हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होती है, जाम होने लगती है।
1: जी
0: वही कंडीशन हमारी बॉडी के साथ भी होती है कि कोई जोड़ अगर हम जिसको ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं मोबाइल कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी मोबिलिटी खोता रहता है।
1: कमर में जकड़न की बात की लोगों की, ऐसे ही कुछ शब्द आते हैं फाइब्रोमाइलिया, तो फाइब्रोमाइलिया क्या है, क्या ये भी कुछ इससे रिलेटेड चलता है?
0: जैसे कोई इंजरी हुई तो फाइब्रोसिस हो गई,
1: अच्छा
0: पेन हो रहा है उसमें, अब फाइब्रोसिस हो गई, इन्फ्लेमेशन नेचुरल होगा, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पेन होगा ही होगा।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: अधिकतर इस तरह की कंडीशन होती हैं कि या तो इंजरी की वजह से होती हैं।
1: किस तरह के लक्षण हमारी बॉडी हमको देने लगती है?
0: सबसे पहला तो यही आता है कि वो हमारा जोड़ जो है ठीक से काम नहीं करेगा, उसको चलाने में हमें दर्द होगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पर गर्माहट आपको महसूस होगी, कुछ जलन भी, कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ घुटने में बहुत जलन हो गई है,
1: जी बिल्कुल हाँ
0: दर्द हो रहा है और जलन हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ जोड़ की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ साइनोवियल फ्लूइड कम है, या उसका एज फैक्टर है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इन सब चीज़ों को हमें जांचना पड़ता है।
1: आपने जोड़ की बात की, हम कभी जैसे पहाड़ी इलाका है हमारे, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो हम देखते हैं हमारे अक्सर घुटने में कभी कभी अचानक दर्द हो जाता है और कभी गायब भी हो जाता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के केस बढ़ता भी हो, और मैंने तो ये तक सुना कुछ लोग कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हमने कराया, तो ये सब कैसे क्या होता है?
0: अब एलोपैथ में तो यही है कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है आप उसको रिप्लेस करा लीजिए,
1: जी हाँ
0: लेकिन आयुर्वेद में जहाँ तक हम अगर सोचेंगे तो आयुर्वेद में नी रिप्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और हम उस तक जाएंगे भी नहीं, हम वहीं से जहाँ पर पेशेंट है उसको कोशिश करेंगे कि वो मैक्स टू मैक्स अपनी फिर से वापस उसी ज़िंदगी में आ जाए जैसे वो पहले था,
1: जी
0: तो सारा दर्द वगैरह सब खत्म हो सकता है।
1: जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम चलते हैं अक्सर तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, या कभी कभी आवाज़ सी आती है कट कट करके, कहीं किसी के बॉडी के पार्ट से भी आती है, तो वो क्या संकेत देते हैं?
0: इसमें यह है कि जैसे हम कोई भी अगर आप जोड़ को देखेंगे ना, चाहे वो पैर का हो, हाथ का हो, छोटे से छोटा जोड़ हो,
1: जी
0: वो जोड़ जो होल्ड होता है वो मसल से होता है, दो तरफ से या चार तरफ से मसल उसको होल्ड किए रहती हैं। अगर मसल्स हमारी टाइट हैं, मसल अच्छे से टोन्ड हैं, तो वो उस ज्वाइंट को अच्छे से होल्ड किए रहेंगी। अगर मसल लूज हो रही हैं, जो भी ज्वाइंट होगा उसको ढीला छोड़ेंगी, ढीला छोड़ेंगी तो वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस में दिक्कत आएगी उस जोड़ के, बॉडी के बैलेंस में नहीं, उस
1: जी
0: जोड़ के बैलेंस में दिक्कत आएगी। तो अगर हम कभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, तो अचानक से जो ये चीज़ होती है कि कभी हमें अचानक से पेन होता है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उस समय पे हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए कि अचानक जो दर्द होता है वो जोड़ में कहीं ना कहीं आपकी हड्डी की वीकनेस को बता रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई

0: सली पुल हो जाती है, उस वजह से हमारे जोड़ में दर्द होता है। तो इसलिए है कि अगर ऐसा कुछ अचानक हो रहा है तो उसके लिए आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए।
1: मैंने देखा कि कुछ जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, ये भी देखा, उनकी उंगलियों कुछ टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनावट हो जाती है, और कोई कहता है पॉलीआर्थराइटिस। अब ये क्या चीज़ है?
0: ये रूमेटॉइड का डिफॉर्मिटी है
1: जी।
0: रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें आपका कोई भी जोड़ अगर चलाएंगे नहीं तो वो जिस कंडीशन में है वैसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे डिफॉर्मिटी बनता जाएगा।
1: जी अच्छा।
0: हम रूमेटॉइड को कहते हैं आम वात, कि हमारा जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसके कारण हमारी वात शरीर में जो है, वात पित्त कफ दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो हमारा वात विकृत हो गया है आम की वजह से, तो वो हमारे शरीर में ये डिफॉर्मिटी पैदा कर देता है।
1: अच्छा, कुछ लोग अफसोस पाते हैं कि उनकी जो गर्दन होती है, नेक, बहुत स्टिफ पाते हैं, और हमने पता देखा जाए तो कभी वो जा करके नाई के पास जा करके अपनी गर्दन चटकाने की कोशिश करते हैं, और आमतौर पर हम लोग भी अपने उंगलियों को स्नैप्स चटकाने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ के संकेत दे रहे हैं जो इस तरह की स्टिफनेस है और हम जो चटका रहे हैं, और हमको कभी राहत भी मिल जाती है उससे?
0: उससे राहत मिलती है कि जो हमारा पूरा कनेक्शन है अंदर से, पूरा नर्व्स का, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कैपिलरीज हैं पूरी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कभी कभी अलाइन नहीं रहती, उलझती हैं, तो उसको जो है रिलैक्स मिल जाता है कभी कभी, और कभी ये हानिकारक भी हो सकता है। और स्टिफनेस का कारण मैंने बताया ही आपको पहले, कि अब हम अधिकतर स्क्रीन पर रहते हैं, अधिकतर हम बैठे बैठे काम करते हैं, तो उस वजह से हमारी गर्दन है, हमारा पोस्चर है, वो सब चीज़ें बहुत सफ़र कर रही हैं।
1: अब हम इसके निदान पर आते हैं, तो कौन कौन से इसके लिए टेस्ट जरूरी होते हैं जो एक डॉक्टर को कराने पड़ते हैं, या फिर उसकी हिस्ट्री को आप कैसे पता कर पाती है कि इनको ये बीमारी है? आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में?
0: आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम जांच में जाएंगे तो ब्लड टेस्ट तो हमें वैसे ही कराने पड़ेंगे जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स कराते हैं, तो वात रक्त या गाउट के लिए हमें सीरम यूरिक एसिड देखना पड़ता है, और रूमेटॉइड के लिए हमें आरएच फैक्टर देखना पड़ता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सीआरपी की जांच कराते हैं, तो सीआरपी में हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किस कंडीशन में है बॉडी, कितने टॉक्सिन्स बन रहे हैं। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो हमें कैल्शियम की कमी या फिर विटामिन डी की कमी, उन सब चीज़ों से पता चल जाती है।
1: उसके बाद तो दवाइयों का ही दौर चलता है। इस संबंध में अगर कोई आदमी आर्थराइटिस से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित है या गाउट से पीड़ित है, तो कुछ परहेज भी आयुर्वेद बताता है।
0: मेन इसमें रोल खान पान का है, लाइफ स्टाइल का है। अगर हम अपने इन दोनों चीज़ों को संयमित रखें तो हम इस रोग से, क्या किसी भी रोग से दूर रह सकते हैं।
1: जी, आजकल तो सरकार कहती है कि मोटा अनाज का सेवन करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब हो सकता है कि कुछ लोग उसको वो सूट भी ना करे क्या, या सभी को मोटा अनाज से फायदा हो जाता है?
0: मोटा अनाज सूट ना करे मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पचने में, आप कहना चाह रहे हैं कि उसको पाचन क्रिया उसमें थोड़ी सी
1: मुश्किल होता,
0: अच्छी
1: भारी
0: चाहिए,
1: भारी हो जाता है।
0: हाँ, उसकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो मोटे अनाज को यूज करने के भी तरीके होते हैं कि उसको आप पहले से ही 10-12 घंटे के लिए भिगा दीजिए, भिगाने के बाद पकाइए तो वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा। उसको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लीजिए, उसको सूखा सूखा मत खाइए। जितना उस अच्छा वो लिक्विड फॉर्म में होगा उतना अच्छा डाइजेस्टेबल होगा। उसके साथ में आप वेजीज यूज़ करिए, जितनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे तो फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन फाइबर सब मिलेगा उसमें, थोड़ा सा साथ में फैट भी यूज़ कर सकते हैं कि 1-2 चम्मच घी डाल दिया। मतलब कोई भी डाइट हो उसमें 4 मेन आपके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, फैट सबसे पहले, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स और फाइबर। ये चारों होंगे तो डाइट अच्छी रहेगी।
1: पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या रहता है?
0: पानी का इंटेक बढ़ाना घटाना ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपकी अगर अग्नि भी मंद है, आपको पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, फिर आपसे कहा जाए आप पानी ज़्यादा पीजिए तो वो भी गड़बड़ है, उससे अग्नि और मंद हो जाएगी। हमें हर चीज़ को पहले हमें डाइजेस्टिव फायर को अपना अच्छे से जगाना है, तो हमें उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी। अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते कि आप पानी बढ़ा दीजिए, पानी कम कर दीजिए,
1: क्योंकि कहते हैं टॉक्सिन्स निकालने होते हैं, तो कहते हैं कि पानी का
0: टॉक्सिन्स निकालने
1: कहा जाता है कि टॉक्सिन तो पानी ज़्यादा पिए।
0: टॉक्सिन्स निकालने के 2 तरीके हैं
1: जी, हाँ।
0: या तो आप मल के द्वारा निकालेंगे या मूत्र के द्वारा निकालेंगे। तीसरा होता है कि आप स्वेटिंग से भी निकाल सकते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है पानी पिया आपको यूरिन ज़्यादा आया तो आपके टॉक्सिन्स निकल गए, हर तरह के टॉक्सिन्स उसमें नहीं निकलते हैं। कुछ फैट सॉल्युबल भी होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई चीज़ ऐसी है जो

0: पानी से नहीं होगी डिसॉल्व, तो उसको चाहिए ही चाहिए फैट। और फाइबर अगर हमने ज़्यादा खा लिया कि कोई कहेगा कि हमें हमारा जो है पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा था फाइबर अच्छे लो, लेकिन फाइबर अच्छा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी को खाते रहो, बैलेंस तो चाहिए हर जगह। फाइबर अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आप पानी भी ज़्यादा पीजिए, वो सॉल्युबल कैसे रहेगा, कैसे निकलेगा? अगर आपने फाइबर ज़्यादा लिया पानी कम पिया तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगा।
1: बहुत कुछ व्याधियाँ जो हैं पानी के पीने से भी दूर हो जाती है कहा जाता है,
0: पानी के पीने से दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट होता है, उसको हम पानी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोई अगर किडनी का पेशेंट है जिसकी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो हम उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप 1 लीटर से पानी दिन भर में ज़्यादा ना पिए।
1: चलिए एक नॉर्मल आदमी के लिए,
0: है कि आप गर्मियों में वैसे देखें तो 3 लीटर 3.5 लीटर पानी, और जाड़ों में पीते हैं तो 2.5 से 3 लीटर पानी,
1: क्योंकि जोड़ों के दर्द में पानी पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है, माना जाए
0: मिलेगा
1: जी। अच्छा, एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, कितना व्यायाम जरूरी है इसके लिए?
0: हर इंसान अपने बल के हिसाब से व्यायाम करेगा कि जितनी उसकी क्षमता है।
1: आपके पास जब से जिससे मरीज आते हैं तो आप उनको एक एक्सरसाइज भी या व्यायाम
0: एक्सरसाइज बताते हैं?
1: हाँ, बताती होंगी
0: तो योग के लिए बताएंगे उसको। तो केवल अगर हम कहेंगे कि हम, हाँ भाई वो घुटने के दर्द से पीड़ित होकर आया है, तो मैं उसको केवल, ऐसा तो नहीं है कि एक घुटने के दर्द के लिए व्यायाम कहूँगी।
1: हाँ।
0: उसको कहूँगी कि पहले अपनी बॉडी को पूरा वार्म अप करे, पूरा स्ट्रेच करे, और उसके बाद मेन जो है वो फोकस हमें घुटने पे करना है, तो हम उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथ करें, उसके लिए बताएंगे। थोड़ा मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है कि मसल्स हमारी स्ट्रांग रहेंगी तभी जोड़ हमारे स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, हम देख रहे हैं कि आजकल के युवा जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, अब लेकिन अगर एकदम एक्सरसाइज छोड़ दी जाए तो ऐसे में उनके जोड़ों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता होगा।
0: जिम जाकर मसल ट्रेन की अपनी,
1: जी
0: अचानक से आपने जिम जाना छोड़ दिया, वो मसल जो ट्रेंड हुई थी वो कुछ टाइम में बिल्कुल लूज पड़ जाएंगी, और वो लूज होते ही क्या होगा, जोड़ों पे असर पड़ेगा। आपके जोड़ कहेंगे कि मैं क्या करूँ, अब मैं तो लटक गया, मसल लूज हुई जोड़ लटक गया, तो पेन तो होना ही स्वाभाविक है।
1: किसी किन्हीं कारणों से एक्सरसाइज छोड़नी भी पड़ती है ना जो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
0: बैलेंस जरूरी है कि आप अगर दिन भर में 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई ऐसा शेड्यूल पड़ जाता है आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं तो फिर भी 5 मिनट आप अपने लिए निकालिए।
1: जी, आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि कहते हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो इसकी क्या कितनी वैल्यू होती है?
0: जब हम जैसे पहले के टाइम में भी आयुर्वेद में भी कहा है कि आतप स्वेद लेते थे लोग, मतलब धूप में काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी में हैं, सब लोग वैसे ही काम करते थे हाथ से, तो स्वेदन होता रहता था। बॉडी का स्वेद जब निकलता है तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं उसके थ्रू, तो उनकी बॉडी फिर भी ठीक से रहती थी। अब हर कोई तो एसी में बैठना चाह रहा है, धूप में बिल्कुल निकलना नहीं चाह रहा। अगर निकलेंगे तो इतनी मोटी सनस्क्रीन लगाएंगे, फिर मुंह पे कुछ कपड़ा बांधेंगे, चश्मा लगा लेंगे, कहीं भी हमें धूप छू ना जाए, दिख ना जाए हमारे शरीर को।
1: जी।
0: तो बॉडी में विटामिन डी की कमी नेचुरली होने लग गई है, हर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है। खाना पीना ऐसा है कि अधिकतर हम प्रोसेस फूड खाते हैं, आजकल के बच्चे खास तौर से, उनको पसंद ही वही आता है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, यही चीज़ें खाएंगे वो, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़ें। तो उससे जो है आम बनेगा बनेगा, आम बनेगा तो आम का पाचन जब नहीं होगा तो आम दोष होंगे।
1: जी, आपने कहा कि विटामिन डी के लिए धूप में बैठा, तो कितने मिनट धूप में करीब बैठना चाहिए हमको?
0: विटामिन डी बॉडी खुद बनाती है, जो हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उसके लिए अच्छा तरीका होता है कि आप हल्का सा अभ्यंग करें अपने शरीर पर किसी भी ऑयल से, तिल के तेल से, सरसों के तेल से, और 15 से 20 मिनट मॉर्निंग की धूप में बैठें। जो रेज हमारी मॉर्निंग की होती हैं उनमें उतनी गर्माहट नहीं होती
1: जी।
0: लेकिन वो फिर भी हमारे शरीर में विटामिन डी बना लेती हैं, तो उससे दो चीज़ें हमारे शरीर की बैलेंस हो जाती हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में बदल गया। तो एक तरफ तो ये फ़ायदा हुआ, बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारा ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ से हमें विटामिन डी मिल गया, अच्छी चीज़। तो इसलिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है।
1: एक अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि हमने देखा कि अक्सर नानी दादी लोग बच्चों की मालिश करते थे, अब हमें अपने बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो कितनी हमको मालिश की आवश्यकता पड़ेगी, कितना हमको धूप में बैठना है, और किस तरह की हमारी दिनचर्या होगी, इस बारे में हमें बताइए
0: कि कम से कम कितना करना पड़े। जबकि आयुर्वेद की दिनचर्या में शामिल है कि हम अभ्यंग के बाद ही स्नान करें, चाहे हम पाँच मिनट सात मिनट अभ्यंग करें बॉडी में, उसके बाद आप स्नान करें, डेली की रूटीन बना सकते हैं। अगर डेली नहीं भी हो पा रहा है तो हम अपना वीकडे जो भी होता है, किसी की मंडे छुट्टी है, किसी की संडे छुट्टी है, किसी का किसी और दिन ऑफ है, तो वो अपने वीकडे में ऐसा अपना रूटीन बना ले कि एक बार तो हमें पूरे शरीर की मालिश करनी ही करनी है और उसके बाद ही हमें नहाना है। अभ्यंग करके थोड़ी देर धूप में बैठो, मतलब एक्सपोजर भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम कपड़े पहनकर धूप में बैठे, हम कह रहे हैं हम तो दो घंटे बैठे हमारे तो विटामिन डी बढ़ा ही नहीं
1: जी।
0: तो ऐसा भी नहीं है। आप उसके लिए कपड़े अपने जब अभ्यंग करेंगे तो कपड़े खोलेंगे ना उतना, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट आप धूप में बैठिए, उसी टाइम पे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, और उसके बाद आपने स्नान करिए आधा घंटे बाद, तो फायदा होगा।
1: तो डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, आप हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे श्रोताओं को आपने ऑर्थराइटिस कारण लक्षण और बचाव के संबंध में जानकारी दी। हम समझते हैं आपकी जानकारी से हमारे श्रोता अवश्य लाभान्वित होंगे। आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ऑर्थराइटिस कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर श्रुति अग्रवाल से की गई संजय जोशी की भेंट वार्ता। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा

0: ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के महा

0: प्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderbir Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद।
0: रविवार है, छुट्टी का दिन, बच्चों की मौज मस्ती का दिन और नन्हे मुन्ने बच्चों के प्यारे प्यारे कार्यक्रम बाल वाटिका के प्रसारण का दिन। तो चलिए शुरू करें आज की बाल वाटिका।
2: ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम बम बम बम बम बम।
0: तो प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत सत्कार और कीजिए स्वीकार अपनी दीदी मेघा रावत का स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में गंगा नदी को माँ के समान दर्जा दिया जाता है ना? तभी तो उसे माँ गंगा कहकर भी पुकारा जाता है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, और नदियों में तो सबसे पवित्र गंगा नदी को माना गया है। प्यारे बच्चों, ये गंगा नदी अतुलनीय है और बच्चों ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था और इस दशमी तिथि को गंगा जी के जन्म दिन के रूप में मनाया जाने लगा और जिसे हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। और ये गंगा दशहरा पर्व आने को है इसी सप्ताह यानी कि कल 25 मई को। और आप सभी को बाल वाटिका की ओर से इस पावन पर्व गंगा दशहरा की

0: प्यारे बच्चों, अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो महाराजा भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल सूखा और निर्जीव क्षेत्र फिर से जीवित हो उठे बल्कि चारों ओर हरियाली भी छा गई। और राजा भागीरथी की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का एक नाम भागीरथी भी है। तो प्यारे बच्चों, गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि जीवन दायिनी माँ के समान है, जो सभी लोगों को पानी और अन्न प्रदान करती है। तो बच्चों, हमें इस पवित्र नदी की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और पानी की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तभी तो बच्चों गंगा नदी के प्रति हमारी सच्ची सेवा प्रदर्शित होती है ना। तो बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें गंगा दशहरा पर्व के बारे में। और अब बच्चों, क्या आप जानते हैं इस पवित्र नदी गंगा के धरती पर आने की एक सुप्रसिद्ध कथा भी है, जिसे आप सभी जरूर जानना चाहेंगे, है ना। तो चलिए आपको ये सुप्रसिद्ध कथा सुनवाते हैं नन्हे रिदित से।
1: मेरा नाम रिदित है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था भगीरथ। वे चाहते थे कि गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर आए ताकि उनकी सूखी धरती हरी भरी हो जाए और उनके पूर्वजों को शांति मिले। लेकिन गंगा जी को धरती पर लाना कोई आसान काम नहीं था। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए भगवान की कठिन तपस्या की। एक साल नहीं, दो साल नहीं, बल्कि कई सालों तक उनकी इस लगन को देखकर गंगा मैया प्रसन्न हुई और बोली, मैं धरती पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बहाव इतना तेज है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी और फट जाएगी। अब भगीरथ फिर से चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने याद किया संकट मोचन भगवान शिव को। भोलेनाथ ने भगीरथ की मदद करने की ठानी। जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से पूरी ताकत के साथ नीचे गिरी, शिव जी ने उन्हें अपनी घनी जटाओं बालों में समेट लिया। गंगा जी शिव जी की जटाओं में रास्ता भूल गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। फिर शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और गंगा जी को धीरे से धरती पर बहने का रास्ता दिया। इस तरह राजा भगीरथ के भगीरथ प्रयास से गंगा मैया हमारे पास आई।
0: तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नन्हे रिदित से ये कथा सुनी। प्यारे बच्चों, ये कथा हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी लगातार कोशिश करने से पूरा हो जाता है ना बच्चों।

0: तो बच्चों ये तो हमने जानी गंगा नदी की पौराणिक कथा। प्यारे बच्चों गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अनेक तरह के प्रयास करने की जरूरत भी रहती है, और वो प्रयास क्या क्या हो सकते हैं? तो चलिए ये बात जानते हैं नन्नी प्रियांशी से।
1: कारखानों का गंदा पानी बिना साफ किए नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। करियों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करके ही नदी में डालना चाहिए। नदी में प्लास्टिक कूड़ा और पूजा सामग्री नहीं फेंकनी चाहिए। लोगों को नदी की सफाई और महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। नदी किनारे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। शव और जानवरों के अवशेष नदी में नहीं बहाने चाहिए। घाटों और आसपास के क्षेत्रों की नियमित सफाई करनी चाहिए। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कम उपयोग करना चाहिए।
0: तो बच्चों आप भी इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखें और गंगा नदी को साफ सुथरा बनाए रखने में अपनी नन्ही परंतु महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं।

0: और अब बच्चों अगली प्रस्तुति लिए हमारे साथ हैं तनुश्री।
1: बड़े देश का जिससे मान वह कहलाता वीर जवान, सीमा की रक्षा जो करता जाड़ा गर्मी वर्षा सहता, कर निछावर अपने प्राण वह कहलाता वीर जवान, नहीं शत्रुओं से जो डरता पहरेदारी डट कर करता, सबका करता जो कल्याण वह कहलाता वीर जवान, नहीं युद्ध में पीठ दिखाता हंसते हंसते गोली खाता, बने राष्ट्र की जो पहचान वह कहलाता वीर जवान, कष्ट हमेशा ही जो सहता नहीं शिकायत को ही करता, होता इसका काम महान वह कहलाता वीर जवान, नहीं कभी जो हिम्मत हारे परहित में ही सब कुछ वारे, करे शीश का भी जो दान वह कहलाता वीर जवान, सुखमय जीवन भय से वंचित जिसके कारण सभी सुरक्षित करते जिसका सब सम्मान वह कहलाता वीर जवान,

0: सच है बच्चों, जो दिन रात हमारे देश की सीमाओं पर डटकर पहरेदार की तरह सदैव तैनात रहते हैं, यही वीर जवान हमें हर पल सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे वीर जवानों का हमें सदैव सम्मान जरूर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जिस तरह ये वीर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश में समय समय पर ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना सब कुछ देश हित में ही न्योछावर कर दिया। और ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती हम मनाएंगे इसी सप्ताह यानी कि 28 मई को। बच्चों, इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माताजी का नाम राधा बाई था। बच्चों, इनके पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। ये बचपन से ही मेधावी थे। 1901 में इन्होंने स्थानीय विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्यारे बच्चों, देश को आजादी दिलाने हेतु इन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई जिसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। बच्चों, देश को आजाद कराने हेतु इन्हें 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में भी रखा गया। इन्होंने जेल में रहने के दौरान हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ भी लिखा और 1927 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी चुने गए। प्यारे बच्चों, वीर सावरकर दुनिया के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने जेल में रहने के दौरान अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कोहले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटकर पुनः लिखा। प्यारे बच्चों, वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी व राष्ट्रवादी नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता और भारत के इस महान वीर सपूत इतिहासकार समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर जी का 26 फरवरी 1966 में निधन हो गया। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा दिया गया ये योगदान सदैव सराहनीय रहेगा और बालवाटिका की ओर से भी वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर आइए उन्हें करते हैं
1: शत नमन और अर्पित करते हैं अपने श्रद्धा सुमन।
2: देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्ले हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में।
0: तो बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। और अब बच्चों, हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसके गौरव का गुणगान करती हुई एक सुमधुर कविता हमसे साझा कर रही हैं हिमानी।
3: युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, दिखता कभी न अपने फिर से, रहता पर अड़ा हिमालय, जो जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय। अगर नगर तक काम कभी कुछ रहता हरदम बड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुटता जड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अपने पद पर सब कठिनाई तूफानी में, देखो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अच्छा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जब में उसको जीने में मर जाने।
0: सच है बच्चों, जो भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा है ये हिमालय, तभी तो दुनिया भर से हुआ सबसे बड़ा हिमालय है ना। प्यारे बच्चों, हिमालय पर्वत जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है भारत के मुकुट के समान है, जिसकी विशालतम प्राकृतिक सौंदर्यता, सांस्कृतिक महत्व और प्रेरणादायक छवि ने सभी को सदैव आकर्षित किया है। तभी तो बच्चों, इन पर्वत श्रृंखलाओं पर विजय प्राप्त करने वालों को सम्मान देने हेतु हर साल 19 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, 29 मई 1953 को दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार इंसानों ने कदम रखा था। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गे ने इन दोनों ने मिलकर वह कर दिखाया जो उस समय तक दुनिया के लिए असंभव माना जाता था। साल 2008 में जब एडमंड हिलेरी का निधन हुआ तब बच्चों नेपाल सरकार ने इस दिन को हमेशा के लिए एवरेस्ट डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और बच्चों ऐसा भी कहा जाता है कि तेंजिंग ने पर्वत के शिखर पर जब अपने पांव रखे तो उन्होंने सबसे पहले अपने देश का झंडा लहराया और अपनी जीत की खुशी जाहिर की। और बच्चों एडमंड हिलेरी की इस सफलता के लिए उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी। बच्चों ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात थी कि कोई व्यक्ति समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर खड़े पर्वत के शिखर तक पहुंचा। तो बच्चों ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं और मानव दृढ़ता के क्षमता का प्रदर्शन भी करती हैं।

अरे बच्चों, ये सब बातें सुन, आप नन्हे मुन्ने बच्चे भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम भी बड़े होकर ऐसे काम जरूर करें जिससे कि देश का नाम रोशन हो। लेकिन बच्चों, किसी भी सफलता को प्राप्त करने से पहले सबसे जरूरी चीज है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो बच्चों आप सभी कार्यों को कर पाएंगे, है ना। और स्वस्थ रहने के लिए तो हमें खूब ढेर सारी मौसमी फल सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, है ना। और आज यही बात अपनी कविता में लिए हमारे साथ हैं नन्हे ध्रुव।

0: सच है बच्चों, हर सब्जी से हमें कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है ना। और आलू तो बच्चों एक ऐसी सब्जी है जिसे हर बच्चा पसंद करता है ना बच्चों। चाहे आलू के चिप्स हो, या हो आलू का पराठा, या हो आलू की सब्जी, हम सभी को आलू किसी न किसी रूप में जरूर पसंद होता है। तभी तो आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है ना। और बच्चों आलू के इस विशाल पोषण महत्व को देखते हुए ही प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्यारे बच्चों, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों द्वारा आलू के छोटे पैमाने पर पारिवारिक खेती के उत्पादन को समर्थन देना। तो चलिए बच्चों, बात जहां हमने आलू पर करी ही है, तो चलिए आज पेड़ पौधों के अद्भुत संसार क्रम में क्यों ना आलू के बारे में ही जान लिया जाए। नन्ही पीहू से,
1: आलू एक पौष्टिक सब्जी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आलू में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। आलू में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, आलू में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। आलू कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है।
0: तो बच्चों, आज हमने पेड़ पौधों के अद्भुत संसार क्रम में आलू के बारे में कितना कुछ जाना है ना। तो बच्चों, ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर। और अब बच्चों, जब भी हम किसी दूसरे देश या दूसरी जगहों पर सैर करने जाते हैं तो वहाँ की भाषा हमें उनसे अलग पहचान दिलाती है ना। यानी कि बच्चों, भाषा ही हमारी पहचान होती है। जैसे हमारे देश की राजभाषा हिंदी है ना। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ करता था। यहाँ

तक की सभी भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, परंतु हिंदी भाषा में नहीं की जाती थी। और इसी के चलते प्रथम हिंदी समाचार पत्र 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। और इसी के चलते प्रथम हिंदी समाचार 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। बच्चों, भारत में इन्होंने ही पत्रकारिता की शुरुआत की थी और इनके प्रथम समाचार पत्र जिसे उदंत मार्तंड का नाम दिया गया, ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। और तभी से बच्चों 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्यारे बच्चों, सभी भाषाओं का अपना अलग अलग महत्व होता है ना, परंतु देश की राजभाषा हिंदी का हमें सम्मान जरूर करना चाहिए और इसे बोलने पर गर्व भी महसूस करना चाहिए। बच्चों, उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन 30 मई को तत्कालीन कलकत्ता शहर से किया गया था और ये सप्ताह में मंगलवार के दिन छपता था। बच्चों, इस समाचार पत्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी भाषा की पहली उपस्थिति दर्ज कराई और अंग्रेजों के शासन काल में हिंदी को संचार की भाषा बनाने की ये पहली और ऐतिहासिक पहल थी, जिस कारण बच्चों हिंदी भाषा को औपचारिकता भी मिली।

0: और अब बच्चों, बात जहां हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर करी ही है, तो चलिए अब आपके सामान्य ज्ञान को और बढ़ाते हैं अनिकेत की इस जानकारी के साथ।
1: देता है आँखों की कमजोरी दूर करने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। चश्मे का स्थान कॉन्टैक्ट लेंस ने ले लिया है। चश्मे का प्रयोग लगभग 700 वर्ष पहले से हो रहा है। रोजन बेकन ने सर्वप्रथम किताब पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया था। यह शीशे की गेंद का एक हिस्सा था। दो लेंस का एक बाइफोकल लेंथ का निर्माण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1984 में किया था। बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चश्मे से स्वच्छ कैसे दिखाई देता है। बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती है। धूप की किरणों हमारी आंखों की कॉर्निया बारीक काला छोटा पर पड़ता है या पड़ती है। आंख के अंदर जो उत्तल लेंस होता है, जो सबसे पीछे वाले पर्दे रेटिना से पहले होता है, उसके द्वारा रेटिना पर उल्टा चित्र बन जाता है। यह चित्र ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है, जहां पर सीधी हो जाती है। इस प्रकार हम वस्तुओं को सही सही देख सकते हैं।
0: भाई वाह अनिकेत, आपने तो हमें चश्मे के बारे में कितनी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। तो बच्चों, आप भी इसी तरह खूब देश विदेश ज्ञान मनोरंजन की बातें जरूर सीखें और दीदी के साथ साझा भी जरूर करें। प्यारे बच्चों, आजकल आप नन्हे मुन्ने बच्चे खेल कूद से ज्यादा लैपटॉप टीवी मोबाइल फोन पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। तो बच्चों, सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और बच्चों, इन वीडियो गेम्स मोबाइल पर लगने से अच्छा है कि आप आउटडोर गेम खेलें। आप जब खेलते कूदते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो प्यारे बच्चों, बात जहां हमने खेलने कूदने पर करी ही है, तो चलिए एक कविता खेलने कूदने पर ही हो जाए नन्नी कनिका से।
2: खेल कूद में है बड़ी बात, ताकत बड़े दिल हो खुशियाल रात, फुसलो दौड़ो हवा को गले लगाओ, दोस्तों संग मुस्कुराओ, हंस हंस कर झूम जाओ, गेंद फेंको चलो दौड़ लगाओ, हर कदम में मस्ती का स्वाद पाओ, हार सफलता से नहीं डरना,

0: बनकर सब मिलकर बढ़ना, खेल कूदना है जीवन का गीत, स्वस्थ तन मन से चमके हर प्रीत।
1: सच है बच्चों, खेलना कूदना तो शारीरिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है, और आप किसी भी खेल को पसंद करते हो तो उस खेल को खेलने के लिए समय जरूर निकालें। तो बच्चों, आप जब अपना मन पसंदीदा गेम खेलते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो उत्तम रहता ही है, साथ ही बच्चों आपका पढ़ने लिखने में भी मन लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये भी बता दें कि इसी सप्ताह 25 मई को फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है। और बच्चों, विश्व फुटबॉल दिवस का आयोजन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से सार्वभौमिक रूप से फुटबॉल के लाभों के बारे में जन जन को जागरूक करना है। तो चलिए फुटबॉल के बारे में जान लेते हैं फुटबॉल खिलाड़ी हर्षित मेहता से।
2: फुटबॉल दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है। यह खेल बहुत मजेदार और चुनौती से भरा होता है, जिसे लोग मस्ती और मनोरंजन के लिए खेलते हैं। फुटबॉल खेलने से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है बल्कि दिमाग भी तेज होता है। इस खेल से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और तनाव भी कम होता है। साथ ही फुटबॉल खेलने से दिमाग और शरीर दोनों में फुर्ती आती है। अन्य देशों के अलावा भारत की भी फुटबॉल टीम है जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती है। खिलाड़ियों को गेंद को पैर से मारकर दूसरे टीम के गोल में डालना होता है। खिलाड़ी की तेज रफ्तार, जबरदस्त तरकीबें और गोल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। फुटबॉल से दोस्ती और टीम वर्क की भावना बढ़ती है।
1: तो बच्चों, जाना ना आपने फुटबॉल खेल के बारे में फुटबॉल खिलाड़ी हर्षित मेहता से। प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपने क्रियाकलापों से समाज को सदैव नई राह दिखाई, और इन्हीं वीरांगनाओं में से एक है अहिल्या बाई होलकर, जिनकी जयंती हम मनाएंगे इसी सप्ताह 31 मई को। तो चलिए बच्चों, आज प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में जान लेते हैं अहिल्या बाई होलकर के बारे में कविता से।
3: अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य चौड़ी नामक गांव चामखेड़ अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मनकोजी की अहिल्याबाई इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी साधी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और वह प्रतिदिन शिवजी के मंदिर पूजन करने जाया करती थी। सन 1766 ईस्वी में वीरवर ससुर मल्हाराव के चल बसे अहिल्याबाई होलकर के जीवन से एक महान साया उठ गया। परिणामतः माँ अपने जीवन से हताश हो गई, परंतु प्रजा हित में उन्होंने स्वयं को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिदा में सो गई।
1: तो बच्चों, जाना ना आपने प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में अहिल्या बाई होलकर के बारे में कविता से। और अब बच्चों, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि पूरे उत्तराखंड में जंगलों में वनाग्नि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे नगर अल्मोड़ा भी वनाग्नि के प्रकोप में आ रहा है ना बच्चों। हम भी सुबह जब उठते हैं तो चारों ओर हमें एक अलग सी ही धुन दिखाई देने लगती है। बच्चों, ये सब कुछ हो रहा है वनों में लगती हुई आग के कारण। बच्चों, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियाँ सब धीरे धीरे इसके प्रकोप में आने लगी हैं। हम अपने ही इस धरती का आंचल खो रहे हैं। हरी भरी जो ये वादियाँ हमें सुकून प्रदान करती हैं, वो आज इस भीषण अग्नि का ग्रास बन चली हैं। तो बच्चों, ऐसे में हमारी ये स्वर्ग तुल्य धरती को हमें बचाना होगा, और इसके लिए बच्चों हम सभी को प्रयास जरूर करने होंगे। जब भी हम वन जंगलों के आसपास जाएं, तो कोई भी ऐसी जलती हुई चीज वनों के पास ना छोड़ें। जब भी आप अपने खेतों के आसपास कूड़ा इत्यादि जलाते हैं, तो जब वह जल जाए तो उसे पानी के द्वारा बुझा दें, जिससे कि उस पर लगी हुई चिंगारियों से आग की लपटें ना उठें, और तुरंत उस पर पानी डालने से वो आग वहीं पर बुझ जाए। साथ ही बच्चों, कहीं अगर आपके क्षेत्र में आग लग रही हो तो तुरंत अपने घर पर बड़े बुजुर्गों को जरूर सूचित करें, ताकि वो वन विभाग को सूचना दे सके और इस भीषण वनाग्नि

0: काम कर सकें। तो बच्चों, इन्हें छोटे छोटे उपायों को आप जरूर अपनाएं और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को इस वनाग्नि के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी जरूर करें। और धुएं से बचने के लिए चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, है ना। और अब बच्चों, वक्त हो चला है बालवाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका नन्नी पाती द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। पिन कोड संख्या है 2636-01। और अब बच्चों, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों, मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब समाचार रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशन तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरविंदर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। समाचार समाप्त हुए।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाशी कार्यक्रम गीत निर्झर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। कीजिए स्वीकार पूजा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिल से जुड़ा रिश्ता प्यार, विश्वास और अपनेपन से बना होता है। ये रिश्ता सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होता, बल्कि सच्ची भावनाओं और समझ से बनता है। इसीलिए दिल से जुड़ा रिश्ता सबसे खास और सुंदर माना जाता है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है। हर सुख दुख में ये सहारा होता है। ना दूरी मायने रखती है ना ज़माना, ना दूरी मायने रखती है ना ज़माना। सच्चा रिश्ता तो बस दिलों के सबसे पास होता है।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना दिल का रिश्ता फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की थी समीर ने। सुनने के ख्वाहिशमंद थे आप सभी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। इसी गीत की फरमाइश की थी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा था गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में, दाग फिल्म से। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के इंतजार में हैं आप सभी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, गांव जाखौद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके परिवार के सभी सदस्य, डुमराव बिहार से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नाज, इसी गीत की फरमाइश की है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान, इसी गीत की फरमाइश की है। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नू साबरी, मुतसिमर साबरी, जरीफ अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सांगली ज़िले के जट शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत किरण हुजरे और रेहान शेख, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय, जवाहरनगर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लीजिए अब पेश है कुमार सानू और पूर्णिमा का गाया कुली नंबर 1 फिल्म का गीत। इस गीत के रचनाकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और इस गीत की फरमाइश हमसे की है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, बाबू प्रियांश और भाव्या देवांगन ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सदरानी और हिना कौसर। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। डोंगर गांव राजनाथ गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। भूण चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशरा सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। यमुनापुरम बुलंदशहर से धीरेंद्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, शौर्या सोलंकी और मोन सोलंकी। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। गांव डांडी कुतुबपुर हांसी जिला हिसार हरियाणा से हैं रामधारी गुज्जर, अवनी प्रियांशी, रियांशी और ओजस गुज्जर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया।

स्कूली नंबर वन फिल्म के इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश की आवाज़ में दरिया दिल फिल्म का ये गीत। विट्ठल भाई पटेल के नगमे को संगीत दिया है राजेश रोशन ने। सुनना चाहा है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमराड़े। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर राही, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर। बदलापुरा मुंबई से हैं प्रणीता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर और टुक टुक गुहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गुहाणकर, श्वेता, सुमित गुहाणकर, कुमारी धोनी गुहाणकर और परी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत निजहर कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राहुल देवर्मन का संगीत है और इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है। इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या ने। राज बिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, तारा देवी हाकू, बाबू राजन हाकू, कल्पना राय हाकू, सुमनिया हाकू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। बागरी मोहल्ला रटलाई से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण और फुंदी बाई बागरी। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज, रोहित, रेशमा, सुनीता, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। इसी गीत की फरमाइश की है कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस, कपिल पटेल, ये हैं खंडवा से। इसी गीत को सुनना चाहा है। आज़ाद रोड सनावा से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, सादिया भी खत्री, आयशा भी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद साद खत्री। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद सादाब खत्री। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। इसी गीत को सुनना चाहा है पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, सुमन, वर्षा, कीर्ति भारती, भानु और किरण, साथी हैं माधुरी। टैगोर गार्डन

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में नीला आकाश फिल्म से। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां। इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ज़िला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, मीरा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा और नीरा। इसी गीत को सुनना चाहा है मकेड़ी अल्मोड़ा से जीवन, गंगा, शुभांगी, सुनील, वामिका, वानिया, दित्या, तनिष, रूपाली, प्रार्थना और तन्मय ने। धार की तुनी अल्मोड़ा से हैं किशन सिंह राणा, दीपा राणा, रजत डोभाल, अंशिका डोभाल और विवेक राणा। डुबकिया अल्मोड़ा से हैं अनस, नीलोफर, अदनान और हया। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय और पवन। इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। ग्राम टाटिक अल्मोड़ा से मनोज मटियानी, कुसुम मटियानी, हितेश और श्रीमती बसंती मटियानी ने।

आज के गीत नजर कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है खून भरी मांग फिल्म का गीत नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है शाहजी नगर बेंगलुरु जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना भाकरे, सुकन्या और सविता भाकरे ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर राजस्थान से रानी बिट्टू और इनके परिवार के सभी सदस्य। पोटा पाली जिला कोरबा से संतोष यादव, बृंदा यादव और अनुराग। इसी गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। पुनावले से हैं अशोक कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी नीरा वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक और आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित, सोनू, मानस राज और इनके परिवार के सभी सदस्य। संबलपुर कांके से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिय और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। नागपुर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमल सहानी, पिंकी सहानी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, संजय ढींगिया और बेगम अफजल। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रमा पुरी, पाली पुरी और सुनील पाठक ने। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष और इनके परिवार के सभी सदस्य। नवरेल महाराष्ट्र से पी एस नुहाणकर, निर्मला नुहाणकर और विशाल नुहाणकर। महाराष्ट्र से संतोष और इनके परिवार के सभी सदस्य। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवाजी, प्रियंका, आयुषी, जयप्रकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने।

खून भरी मांग फिल्म के इसी गीत की फरमाइश की थी। खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, और इसी गीत को सुनना चाहा था नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने। अब इसी गीत के साथ आज के गीत निझर कार्यक्रम से पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रंग।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

इतने हजार मील से आया हूँ आप लोगों के सामने, तो आपके लिए रात पूरी दी हुई है मैंने, और आप लोग शायद नींद आ रही है जो आप आराम करना

0: अभी आप सुन रहे थे मेहदी हसन की गाई ये गजल।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये

अभी आप सुन रहे थे साहिर होशियारपुरी का कलाम। फनकार थे जगजी सिंह और चित्रा सिंह। आइए सब रंग कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

श्रोताओं, किन्हीं कारणों से आप प्रादेशिक समाचार नहीं सुन पाए, जिसका हमें खेद है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। आज के सुरबहार कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं हूं पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है राग शिवरंजनी पर आधारित प्यार झुकता नहीं फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। श्रोताओं, राग शिवरंजनी भारतीय संगीत यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों का एक बहुत ही सुंदर, मधुर, सरल और भावपूर्ण राग है। इसमें करुणा और शांति का अनूठा मिश्रण होता है। ये एक उदास और शांत राग है जो मानव मन की भावनाओं को गहराई से छूता है।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं लाग राग बिलास खानी तोड़ी पर आधारित। श्रोतो, राग बिलास खानी तोड़ी भारतीय संगीत में एक बहुत ही भावपूर्ण और गंभीर सुबह का राग है। कई दिग्गज संगीतकारों ने इस राग के मधुर और उदास तत्वों का इस्तेमाल कर हिंदी सिनेमा के कई अमर गीत रचे हैं। इन्हीं मधुर गीतों में से एक गीत इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अनपढ़ फिल्म से।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, अब बात करते हैं राग पहाड़ी की। राग पहाड़ी भारतीय फिल्म संगीत में बेहद लोकप्रिय राग है, जो अपनी मधुरता और पहाड़ी लोक संगीत के करीब होने के कारण जाना जाता है। राग पहाड़ी की खासियत इसकी मधुर, सुकून देने वाली और दिल को छू लेने वाली धुन है, जो अक्सर पहाड़ों और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत राग पहाड़ी पर आधारित लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके रचनाकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

आज के कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं दादा फिल्म का गीत यशुदास की आवाज़ में। कुलवंत जानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने। श्रोताओं, ये गीत राग भीम पलासी पर आधारित है। राग भीम पलासी भारतीय संगीत में बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग है जो काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है। ये राग दिन के तीसरे पहर में गाया और बजाया जाता है।

मीडियम वेव, माफ कीजिएगा, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

महालक्ष्मी अय्यर और साथियों से अभी आप सुन रहे थे पना फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे प्रसून जोशी, मौसीकार थे जतिन ललित। सैनिक भाइयों, लीजिए अब पेश है हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ों में बंधन बाहों का फिल्म का गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

जसपाल सिंह और हेमलता से अभी आप सुन रहे थे बंधन बाहों का फिल्म का गीत। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज़ों में सपने साजन के फिल्म का ये गीत।

सनी भाई उस सपने साजन की फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक और मनहर उदास की, और जब पेश है मुस्कुराहट फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

सैनिक भाइयों, धनवान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम की। और लीजिए पेश है आईना फिल्म का गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

आशा भोसले, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर से आईना फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मानस चक्रवर्ती का गाया राग वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबला संगत की है समर साह ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित मानस चक्रवर्ती का राग वृंदावनी सारंग में गाया ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी समर साह ने। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

स्वीकार आपके रेडियो दोस्त रेखा सलोरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार का जन्मदिन है जिन्होंने 70 के दशक से अपनी मधुर धुनी देना शुरू किया और लगभग 2017 तक वे हिंदी सिनेमा से भरपूर मनोरंजन करते रहे लोगों का। श्रोताओं, ये संगीत के शुरू के महारथी हैं संगीतकार राजेश रोशन। तो आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में आप सभी मेरे साथ मिलकर सुनिएगा संगीतकार रोशन के संगीत से सजी कुछ सुंदर फिल्मों के सुंदर नगमे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं राजेश रोशन के संगीत से सजे उस खूबसूरत गीत के साथ जिस गीत ने उन्हें वर्ष 1975 का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। और श्रोताओं, ये फिल्म है जूली। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत है आनंद बख्शी का, संगीत राजेश रोशन का।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।

0: खुशहाल। उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, राजेश रोशन का जन्म 24 मई वर्ष 1953 को बॉम्बे में संगीतकार रोशन के घर हुआ। घर पर ही संगीत का माहौल होने के कारण बचपन से ही राजेश रोशन का संगीत के प्रति गहरा रुझान था। वे अपने पिताजी के साथ बैठकर संगीत की बारीकियां सीखते रहे। आइए सुनते हैं संगीतकार राजेश रोशन के संगीत से सजा दिल तुझको दिया पन का ये गीत।

श्रोताओं, राजेश रोशन ने किशोर कुमार, बासु चटर्जी, देवानंद, मोहम्मद रफ़ी, अमित कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ लगातार सफल फिल्में बनाई। उन्हें 1974 की फिल्म कुआरा बाप और वर्ष 1975 की फिल्म जूली के लिए संगीत से बेहद प्रसिद्धि मिली। राजेश रोशन ने कुआरा बाप के लिए और फिर 3 बैक टू बैक हिंदी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें 30 परदेस, मनपसंद और लूटमार शामिल हैं। राजेश रोशन ने मामा भांजा, दूसरा आदमी, स्वामी, प्रियतमा, यही है जिंदगी, एक ही रास्ता, स्वर्ग नर्क, इनकार, खट्टा मीठा, बातों बातों में, 2 और 2 5, कामचोर, हमारी बहू अलका, जाग उठा इंसान, भगवान दादा जैसी फिल्मों की मधुर धुनी बनाई और किशोर कुमार से गवाई। घर संसार के बाद राजेश खन्ना के साथ जनता हवलदार, निशान बाबू और आखिर क्यों जैसी फिल्में इन्होंने की। आइए सुनते हैं निशान फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

श्रोताओं, 90 के दशक में राजेश रोशन ने बेहद सुंदर सुंदर धुनें बनाई। उन फिल्मों के नाम हैं करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, पापा कहते हैं, कोयला, कीमत, दाग द पायर, दस्तक, क्या कहना और कहो ना प्यार है। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये नगमा।

श्रुतों, राजेश रोशन को हिंदी सिनेमा के संगीत में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने कहो ना प्यार है और कोई मिल गया जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कई फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार जीते। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म कृष का ये नगमा।

श्रोताओं, राजेश रोशन ने 70 के एरा के सभी बड़े बड़े गायक गायिकाओं को अपनी धुनों के साथ तो गवाया ही, साथ ही 90 के दशक के सभी गायकों और गायिकाओं के साथ आज की पीढ़ी के गाय

कुणाल गांजावाला, श्रेया घोषाल और भी बहुत सारे उनकी फेहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म जुर्म का ये सुंदर नगमा भला कोई भूल सकता है। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

श्रोताओं, राजेश रोशन के संगीत से सजी कुछ मुख्य फिल्में हैं। वर्ष 2017 में आई फिल्म काबिल, क्रिश, काइड्स, क्रेजी, एतबार, कोई मिल गया, टाइम्स स्क्वायर में प्यार, न तुम जानो न हम, आप मुझे अच्छे लगने लगे, कोई मेरे दिल से पूछे, कारोबार, मेला, त्रिशक्ति, लावारिस, खोटे सिक्के, कुदरत, मेले दो, अनमोल रतन, जाने जिगर, कीमत, युग पुरुष, गुलाम मुस्तफ़ा, कोयला, तराजू, कौन सच्चा कौन झूठा, दस्तक, पापा कहते हैं, छोटा सा घर और करण अर्जुन। श्रोताओं, वर्ष 2025 में नेटफ्लिक्स ने द रोशंस नाम से चार भाग वाली वृत्तचित्र श्रृंखला जारी की। ये श्रृंखला संगीतकार रोशन से लेकर उनके बेटों राकेश रोशन और राजेश रोशन और अभिनेता ऋतिक रोशन तक की कलात्मक विरासत का पता लगाती है। ये दर्शाती है कि कैसे परिवार के रचनात्मक योगदान ने मुख्यधारा की बॉलीवुड संगीत और सिनेमा को आकार देने में मदद की। आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत से सजा करण अर्जुन फिल्म का ये नगमा।

तो श्रोताओं, ये थी आज की मेरी पसंद संगीतकार राजेश रोशन पर केंद्रित। अब आज के इस प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलूरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी बहन गीता कनवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों अपने आज के आधे घंटे के खूबसूरत सफर में हम करेंगे आपसे कुछ और नई रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना हम सभी का लक्ष्य होता है और सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम निरंतर इसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हर दिन अपने आप में खास होता है और कुछ न कुछ नया सीखने की प्रेरणा देता है। बहनों जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं और क्या सीखते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की क्षमता होती है। क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखने की कोशिश ही हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। बहनों जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी सफलता के रूप में तो कभी कठिनाइयों के रूप में। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना ही हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए बहनों खुद को समझिए और हर दिन नया सीखते रहने का अभ्यास करिए। बहनों कुछ नया सीखने का अर्थ है नई नई जानकारियां प्राप्त करना, अपने सोचने समझने व अनुभव करने या कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाना। बहनों देखे ना हम महिलाओं को घर के कार्यों की व्यस्तता के साथ थोड़ा समय अपने लिए भी जरूर निकालना चाहिए और इस समय को नए नए कार्यों को सीखने में प्रयोग करना चाहिए। बहनों मान लीजिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे अच्छा ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, साथ ही अच्छे सकारात्मक विचार भी आएंगे जिससे आप अपना हर दिन सकारात्मकता के साथ जी पाएंगी। साथ ही बहनों अगर आप सिलाई कढ़ाई या पेंटिंग का शौक रखती हैं और इनमें पारंगत हैं तो इसे भी अपनी हॉबी का रूप दे सकती हैं और साथ में अन्य लोगों को भी सिखा सकती हैं। इससे आप में आत्मविश्वास तो आएगा ही और आप जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास करती चली जाएंगी। साथ ही बहनों आप में गीत संगीत का हुनर है तो आप इस क्षेत्र में भी अपना आत्मनिर्भरता का कदम बढ़ा सकती हैं और पूरी लगन से अपने परिवार को भी आर्थिक सहयोग दे सकती हैं। बहनों नया नया स्वाद भरा भोजन किसे पसंद नहीं होता और नए नए डिश तो आप सभी के चेहरों पर एक नई मुस्कान ला देते हैं। तो बहनों अगर आप नए नए स्वाद भरे डिश बनाती हैं तो इसे भी अपनी हॉबी का रूप दे सकती हैं। नए नए स्वाद भरे व्यंजन बनाकर आप परिवार में अपनी अच्छी अच्छी मिसाल कायम कर सकती हैं। साथ ही बहनों घर में बच्चे हम सभी की खुशियों का खजाना होते हैं और आज बच्चों को नई नई तकनीकों के बारे में अच्छी जानकारी है और आप चाहें तो नई नई तकनीकों के बारे में बच्चों से सीख सकती हैं। बच्चों के साथ आपका टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और आप कुछ नया भी बच्चों से सीख पाएंगी। इसी तरह बहनों अगर आप गार्डनिंग का शौक रखती हैं तो इसे भी अपने खाली समय में आप पूरा कर सकती हैं। नए नए पौधे फूल आदि लगाकर आप अपनी बगिया को नई तरीके से महका सकती हैं। बहनों काम चाहे कोई भी हो उसे सीखने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तन्मयता के साथ नए काम को सीखने की ललक होनी चाहिए, तभी हम उस कार्य को सीख पाएंगे। इसी तरह अगर आप अच्छा नृत्य करती हैं तो समय निकाल कर जरूर करिए। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कोई जानकारी लेनी है तो आप उसे भी सीखिए। नए नए रचनात्मक कौशल के बारे में अगर आप अच्छी जानकारी रखती हैं तो अपने इस कार्य को भी आप नए नए डिज़ाइनों के माध्यम से पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा आप नई नई भाषाएं सीखना चाहती हैं तो इसे भी खाली समय में पूरा कर सकती हैं। इस तरह से बहनों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर सीखना चाहें तो बेहिचक सीख सकती हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपका जब मन करे आप अपनी राह पर निकल पड़िए और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो बहनों ये तो थी कुछ बातें कुछ

0: नया सीखे विषय पर। और अब आइए कार्यक्रम में आगे लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: बहनों, हम सभी अपने जीवन में हर समय खुश रहना चाहते हैं और खुशियों के पलों को संजो कर रखना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में खुश रहने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। और अपने जीवन में खुश रहना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो बहनों, आइए बातचीत के इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं हर दिन छोटी छोटी खुशियां तलाशें विषय पर श्रीमती गीता मेहरा से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत।

0: स्वागत है गीता जी आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: धन्यवाद मैम, आपने मुझे कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि खुशी किस तरह से हमारे जीवन को खुशनुमा बनाती है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, खुशी जो है ना वो हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने वाली एक अनमोल दौलत होती है। अगर हम उसको संजो कर रखते हैं तो हम खुद खुश रहना सीख जाते हैं। जो खुशी है ना वो हमारे जीवन का एक सुंदर एहसास है, कठिनाई को आसान बनाता है और ये केवल हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं होती है, ये हमारे मन की शांति भी होती है जो जीवन में छोटी छोटी खुशियों के रंगों को भर देती है। अगर हमारे जीवन में खुशी है ना, हम खुश हैं तो हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी और हम खुद भी खुश रहते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली, उसे भी खुशी रखते हैं। मन खुश है तो बच्चों से भी प्यार से बातें करते हैं। अगर हम खुश हैं ना तो हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं, काम करने में भी मन लगा रहता है। अगर हम खुश हैं तो हम सबसे प्यार से बातें करते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं उनमें भी प्रेम बड़ा रहता है।
0: इसके अलावा गीता जी, जब हम खुश होते हैं तो हम कैसा अनुभव करते हैं? खुश रहना हम सभी के लिए किस तरह फायदेमंद है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल, जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन जो है ना वो शांत रहता है, मन में किसी भी चीजों को करने में उत्साह रहता है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। खुशी हमें जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सिखाती है और जो हम सोचते हैं सोचने का तरीका बेहतर बना देती है। खुश रहने से हमारे मन में तनाव मुक्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम अपने काम को और अधिक मन लगाकर करते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हम आसपास के लोगों से खुशी खुशी से बातें करते हैं। इसके साथ ही खुशी हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान और दिल में आत्मविश्वास दिखाई देता है। खुश रहने में मन में सुकून रहता है, नेगेटिविटी दूर रहती है। अगर हम खुश हैं तो हमसे जुड़े सभी लोगों को हम खुश रखते हैं। खुशी जीवन का अनमोल उपहार है। खुश रहने से हर काम आसान और सुंदर लगने लगता है, इसलिए खुश रहना जीवन में न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार, हमसे जुड़े लोगों, सभी के लिए फायदेमंद है।
0: जी गीता जी, छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में क्या मायने रखती हैं?
1: जी छोटी छोटी खुशियाँ तो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। ये हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं, हमारे जीवन में मिठास भरती हैं, ये हर दिन को खास बना देती हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे, बड़े बड़े सपनों के पीछे भाग रहे हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। जो उनको रोजमर्रा डेली की लाइफ में खुशियाँ मुस्कान लाती है वो उन्हें भूल रहे हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, हमारे आसपास ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और चिड़ियाँ चहकती हैं, हम उसका आनंद लेना भूल रहे हैं। हमारे अपने हमसे प्यार से बातें करते हैं, हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करना पसंद करते हैं, तो हम उन्हें छोड़कर फोन पकड़कर एक कोने में चले जाते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं और कहीं बैठ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों के मायने हम भूलते जाते हैं।

0: हैं। अगर हमें अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है तो हमें छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी ही होंगी।
1: इसके अलावा गीता जी, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, खुशियों को तलाश कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, लाइफ में खुशियाँ पाने के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग और हर पल को, समय को जैसा है वैसे अपनाने की आदत होनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना सीख जाते हैं तो ये जो जीवन है खुद पर खुद सुंदर लगने लगता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारे मन को सुकून पैदा करते हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दूसरों की हेल्प करना और इंसान के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, उसे देख के हमें भी अच्छा लगता है, उसकी ब्लेसिंग भी हमें मिलती है और हमें जो पसंद होता है वो काम भी करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ लगता है कि हमें ये चीज़ें हमारे लिए अच्छा है, हमें करना चाहिए, तो मैं नहीं मानती हूँ कि उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें उसे भी करना चाहिए क्योंकि उससे हमें खुद को सुकून मिलता है। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब हम अपने लिए जीते हैं ना, जो हमें करना पसंद है वो हम करते हैं, इसलिए हमें अपने लिए जीना सीखना चाहिए, उसी में सबसे ज़्यादा खुशी है।
1: जी गीता जी, आपने गौर किया होगा कि खुशी हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं तो हमारा जीवन नीरस और बेजान सा हो जाता है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: जी बिल्कुल, खुशी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल हमारी हंसी या मुस्कान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तो हमें शांति और सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारे अंदर खुद पे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम कोई भी काम हो ना उसे हम आसानी से कर लेते हैं। यदि हम खुश नहीं है तो हमारा जो जीवन है ना वो धीरे धीरे नीरस और बेजान बोझ सा लगने लग जाता है। खुशी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल हमारी हंसी या मुस्कान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे तो हमें शांति सुकून मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारे अंदर खुद पे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम कोई भी काम हो ना उसे हम आसानी से कर लेते हैं। यदि हम खुश नहीं हैं तो जो हमारा जीवन है ना वह धीरे धीरे नीरस और बेजान बोझ सा लगने लग जाता है। अगर मन में खुशी ना हो तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हर काम अधूरा अधूरा सा लगता है। खुशी के बिना जीवन तो बेकार है, बोझ है। वो उस दीपक की तरह होता है जिसमें उजाला नहीं होता है। भले ही बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा हो लेकिन वो अंदर से खोखला ही होता है, उदास रहता है। जो सच्ची खुशी है ना वो पैसे, बड़ी बड़ी सफलता, उच्च उपलब्धियों से नहीं मिलती है, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। अपनी फैमिली का प्यार, अपनों से मिला सम्मान, इससे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखना चाहिए, हर पल का सम्मान करना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हम खुश है ना तो जीवन सुंदर और सरल बन जाता है।
1: गीता जी, खुश रहना हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह काम करता है, तो ये कितना सही है?
0: खुश रहना वास्तव में हमारे शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह ही काम करता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा मन भी शांत और टेंशन फ्री रहता है। खुशी हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अगर देखें ना तो जो डॉक्टर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि खुश रहने से हम टेंशन फ्री रहते हैं, नींद अच्छी आती है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खुशी केवल मन को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को भी इफेक्ट डालती है। अगर हम खुश रहते हैं ना तो जीवन में नई उम्मीद जगती है। जो इंसान हर परिस्थितियों में खुश रहने की कोशिश करता है वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है। जिस प्रकार औषधि शरीर के रोगों को दूर करती है, वैसे ही खुशी जो है वो मन की उदासी, चिंता, निराशा को कम करने का काम करती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए और जीवन को मुस्कुराकर जीने की आदत बनाना चाहिए, क्योंकि खुश मन ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।
1: बहुत अच्छा गीता जी, आप हमारे कार्यक्रम घर संसार के माध्यम से हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं आपके कार्यक्रम घर संसार के माध्यम से अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको अपना कर घर संसार को सुंदर बनाया जा सकता है। आपने जो ये कार्यक्रम हम बहनों के लिए बनाया है, इसके माध्यम से हम अपनी आवाज को बहनों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी मन की बातें सबके सामने रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। रेडियो की आवाज जो है मनोरंजन ही नहीं करती है बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचकर उन्हें नई सोच और नई ऊर्जा भी पैदा करती है। इसलिए जीवन अनमोल है, इसे अच्छी तरह से हंसी खुशी के साथ जिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें और जिस कार्य में आपको खुशी मिलती है वो कार्य जरूर करें। सकारात्मक सोच रखें, छोटी छोटी बातों

0: समस्या ढूंढे। एक महिला केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभाती बल्कि पूरे परिवार की ताकत और प्रेरणा भी होती है। इसलिए हर बहन को अपनी खुशियां, अपने स्वास्थ्य और अपने सपनों का भी ख्याल रखना चाहिए।
1: गीता जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और हमें अपने जीवन में किस तरह से छोटी छोटी खुशियों को तलाशना है इस विषय पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हम साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी हर दिन छोटी छोटी खुशियां तलाशें विषय पर श्रीमती गीता मेहरा से की गई ये क्षेत्र सक्रिय बातचीत। और अब आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, गैर संचारी रोग के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो है सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन में होने वाला दर्द। और देखें तो ये समस्या मोबाइल, लैपटॉप और गलत जीवन शैली के कारण अधिक बढ़ रही है। बहनों, अब सवाल ये है कि सर्वाइकल पेन है क्या? बहनों, हमारी गर्दन की हड्डियों को सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। जब इन हड्डियों, मांसपेशियों या नसों पर दबाव पड़ता है, तब गर्दन में दर्द, जकड़न और कमजोरी महसूस होती है, और यही समस्या सर्वाइकल पेन कहलाती है। बहनों, सर्वाइकल पेन के कारणों की अगर बात करें तो इनमें घंटों मोबाइल चलाना, लगातार कंप्यूटर पर काम करना, झुककर पढ़ना, गलत तरीके से बैठना या सोना, भारी वजन उठाना और व्यायाम की कमी इसके मुख्य कारण हैं। और बहनों, कई बार तनाव, बढ़ती उम्र भी इस समस्या को बढ़ा देते हैं। और बहनों, अब बात करते हैं सर्वाइकल पेन के लक्षणों के बारे में। सर्वाइकल पेन की समस्या में कई लक्षण दिखने में आते हैं, जैसे कि गर्दन में लगातार दर्द, सिर दर्द, कंधों में भारीपन, हाथों में झनझनाहट, चक्कर आना और गर्दन घुमाने में कठिनाई होना। और यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। और बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर्वाइकल पेन की समस्या होने पर इससे किस तरह बचा जा सकता है या फिर इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। बहनों, सबसे पहले सही मुद्रा में बैठने और चलने की आदत डालें। मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल लंबे समय तक लगातार ना करें। बीच बीच में गर्दन को आराम दें, साथ ही हल्के व्यायाम करें और सोते समय बहुत ऊंचा तकिया ना लगाएं। इसके अलावा पौष्टिक भोजन का सेवन करें और नियमित योग अपनाएं। तनाव से भी दूर रहें, पर्याप्त नींद लें। इसके अलावा बहनों, दर्द अधिक होने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें, बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें। बहनों, सर्वाइकल पेन आज गलत जीवन शैली से जुड़े एक आम समस्या बन गई है, और यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया जाए और साथ ही सही आदतें ना अपनाई जाएं तो सर्वाइकल पेन की समस्या और भी बढ़ सकती है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें, जागरूक बने, सही दिनचर्या को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं तो काफ़ी हद तक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें गैर संचारी रोग के अंतर्गत सर्वाइकल पेन की समस्या के बारे में। और अब आइए कार्यक्रम में आगे करते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ।

तो बहनों इसी गीत के साथ अपनी बहन गीता गनवाल को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो

दोनों की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें।

यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर

0: 30वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का कायम की एक नई मिसाल, उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में लीजिए पेश है राजेश जौहरी का कलाम, गुलकारा है मिताली मुखर्जी।

मिताली मुखर्जी से अभी आप सुन रहे थे राजेश जौहरी का कलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रूपक कुमाऊं के झोड़े, प्रस्तुति है शंकर उप्रेती की।

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्वतीय अंचल, जहाँ की कल कल बहती नदियों, झरनों, चीड़ और देवदार के वृक्षों में संगीत की स्वर लहरी बसती है, वहीं यहाँ के लोक जीवन में आमोद प्रमोद के साधन के रूप में अनेकों लोकगीत तथा लोक नृत्य प्रचलित हैं। कुमाऊं में अनेक पर्वों, उत्सवों, मेलों, त्योहारों, सांस्कृतिक संस्कारों, ऋतुओं, धार्मिक अनुष्ठानों आदि अवसरों पर यहाँ के लोगों द्वारा लोक साहित्य के विविध रूप हैं, जिसमें लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक नाट्य, कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ आदि विविध विधाएँ आती हैं। लेकिन साहित्य की आत्मा केवल लिपि व वर्णमाला तक ही सीमित नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि लोक की परंपरागत मौखिक अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती हैं। अन्य भारतीय लोक साहित्यों की तरह हिमालय के उत्कंठ में स्थित कुमाऊं के लोक साहित्य का एक अलग ही महत्व है। यहाँ के जनजीवन में अनेकों लोकगीत नृत्य प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख लोकगीत है झोड़ा। झोड़ा एक सामूहिक नृत्य गीत है, जिसमें स्त्री पुरुष और बच्चे एक गोल घेरे में पथ संचलन करते हुए गाते व नृत्य करते हैं। इन झोड़ों में प्रेम, परिवार, धर्म, समाज, आस्था

और समसामयिकता आदि का भाव मुख्य रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके सामने कुछ ऐसी झोड़े लेकर आए हैं जो समय के साथ मनाए जाने वाले पर्वों पर गाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है आस्था के प्रतीक झोड़े, जिसमें ईश वंदना की बात मुख्य है।

प्रेम एक विरासत है, चाहे इसे जितना बांटो। कृष्ण और राधा के अनूठे प्रेम का सामंजस्य यहाँ के लोकगीतों में परिलक्षित है। प्रेम के इस अनूठे संयोग और वियोग पक्षों को लोकगीतों में जो शब्द लोक कलाकारों ने दिए हैं, उसके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है।

पर्वतीय अंचल में कुछ झोड़े ऐसे भी हैं जिसमें प्रश्न और उत्तर होते हैं। प्रस्तुत झोड़े में बहिने अपने भाई से, जो कि सिपाही है, से कह रही हैं कि हे दादू, तुम आज के जाने के बाद कब आओगे। भाई कहता है कि मुझे देश की रक्षा के लिए जाना है, पता नहीं कब आऊं, परंतु

हमारे पारिवारिक जीवन में कई क्षण ऐसे भी आते हैं जिसमें हास परिहास के साथ साथ मीठे व्यंग जो देवर भाभी और जीजा साली जैसे संबंधों में साफ दिखाई देते हैं। प्रस्तुत झोड़े में कुछ ऐसे ही भाव हैं जो प्रेम की पवित्रता को हमारे सामने रखती हैं।

इस अंचल में कुछ झोड़े ऐसे भी गाए जाते हैं जिसमें दार्शनिकता के भाव स्पष्ट झलकते हैं, जैसे प्रस्तुत झोड़े के भाव हैं, रे माछी संसारी माछी घुगुती का घोल, रे सुनिया सबता म्यारा समझिए बोल। कहने का तात्पर्य यह है कि ये माया रूपी संसार एक घुगुते पक्षी के रहने का घरौंदा ही नहीं, बल्कि भावनाओं के अथाह सागर में आपकी अपनी क्या पहचान है।

हमारे कुमाऊं अंचल में कई धार्मिक, वीर और प्रेम की लोक गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से राजूला मालूशाही की लोक गाथा अत्यधिक प्रचलित है। यहाँ प्रचलित लोक गाथाओं को भी झोले के रूप में गाए जाने की परंपरा है। प्रस्तुत है राजूला मालूशाही की गाथा पर एक झोला, जिसमें राजूला के रूप और नक्शिक का वर्णन स्पष्ट है।

पुराने समय से यहाँ के लोग, विशेष रूप से युवक, रोजगार के लिए पहाड़ से पलायन कर जाते हैं। इसमें छिपी है हालात की मजबूरियां और विवशताएं, वरना शुद्ध हवा, ठंडा पानी और इस मनोरम सौंदर्य से परिपूर्ण इस पहाड़ को कौन छोड़ेगा।

कुमाऊं के जोड़े, अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। प्रस्तुति थी शंकर उप्रेती की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के पहले लोकगीत को स्वर दिया है चंद्रदत्त सयाल और दीपा चौहान ने।

चंद्र दत्त सोयाल और दीपा चौहान के स्वर में अभी आपने सुना ये लोकगीत। उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के अगले लोकगीत को स्वर दिया है दर्शन सिंह बिष्ट ने।

0: दर्शन सिंह बिष्ट से अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसी के साथ आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने कुछ गढ़वाली लोकगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की

ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की

0: पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद

0: दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पूरन सिंह मेहता की वार्ता। विषय है सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती।
3: किसान भाइयों व बहनों, धान की फसल हमारे खेतों की एक प्रमुख फसल है। धान की पहचान हमारी संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों से भी गहनता से जुड़ी हुई है। इसे सिंचित व असिंचित दोनों परिस्थितियों में उगाया जाता है। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में खरीफ फसलों में लगभग 54% फसल क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। उत्तराखंड में 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसे बोया जाता है और लगभग 5.5 लाख टन पैदावार होती है। धान उत्पादन की दृष्टि से सिंचित क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। धान वाले क्षेत्र संपन्नता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे धान की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धान की खेती के लिए भारी मिट्टी जैसे कि मटियार दोमट वाले खेत अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि उसमें नमी संचरित करने की क्षमता अधिक होती है। धान की खेती के लिए बुआई 2 प्रकार से की जाती है। पहले प्रकार में धान के बीजों को सीधे खेतों में बो दिया जाता है। इस विधि में मई द्वितीय पखवाड़े में बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। सीधे खेत में बोने से 1 दिन पूर्व बीज को पानी में भिगो दिया जाता है ताकि उनमें अंकुरण समय पर हो सके और खराब बीज जो हल्के होते हैं उन्हें पानी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। ताकि स्वस्थ बीज ही

0: बुआई में उपयोग हो सके। सीधी बुआई विधि में भी किसान दो प्रकार से बीज बोते हैं, छिड़क कर व पंक्तियों में। पंक्तियों में बुआई करना लाभप्रद होता है क्योंकि पंक्तियों में बुआई करने से लगभग 25% बीज की मात्रा कम लगती है। साथ ही साथ कर्षण क्रियाएं जैसे निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण में भी आसानी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है रोपाई विधि। इस विधि में पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी में पौधे तैयार हो जाने के उपरांत उन्हें खेत में स्थानांतरित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सरी बुआई माह मई में की जाती है और पौध रोपण जून अंतिम सप्ताह से जुलाई प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाता है। तराई व मैदानी भागों में मई द्वितीय पखवाड़े से जून प्रथम पखवाड़े तक नर्सरी की बुआई कर सकते हैं और रोपाई जून द्वितीय पखवाड़े से जुलाई माह तक कर सकते हैं। सीधी बुआई हेतु 2 किलोग्राम बीज प्रति नाली की दर से बोया जाता है। रोपाई विधि के लिए नर्सरी डालने हेतु 1.5 किलोग्राम बीज प्रति नाली पर्याप्त होता है। नर्सरी बुआई के लिए खेत की जुताई 2-3 बार करके उसमें सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद 2-3 क्विंटल प्रति नाली की दर से नर्सरी तैयार की जाती है। अंतिम जुताई के समय 1200 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फॉस्फोरस और 600 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से मिलानी चाहिए जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। सावधानीपूर्वक नर्सरी बेड तैयार हो जाने के उपरांत 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बीजों को बोया जाता है। बीजों को बोने से एक दिन पूर्व पानी में भिगाया जाता है ताकि उनमें अंकुरण समय पर हो सके। नर्सरी में अंकुरण होने के लगभग 15 दिन पश्चात हल्की निराई गुड़ाई व खरपतवारों को निकालना चाहिए और सिंचाई का उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि समय समय पर नर्सरी की सिंचाई होती रहे। नर्सरी में जब पौधे 40 से 50 दिन के हो जाते हैं तो उनकी अच्छी तरह खेत में रोपाई की जाती है। रोपाई से 15 दिन पूर्व खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करके खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरी जुताई के समय 3 क्विंटल प्रति नाली की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। अंतिम जुताई के उपरांत खेत में पानी भर दिया जाता है और पडलर की सहायता से पडलिंग करके उसमें 600 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फॉस्फोरस व 600 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से डालकर खेत को पौध रोपण हेतु तैयार किया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में साया कहा जाता है। खेत तैयार हो जाने पर 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में धान के पौधों की रोपाई की जाती है। रोपाई के उपरांत 8-10 दिन तक खेत में पानी नहीं डाला जाता है जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी में ठीक से अवस्थित हो जाएं। तत्पश्चात खेत में लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर 2-3 बार निराई गुड़ाई व खरपतवार निकालने का कार्य करते रहना चाहिए। धान की फसल जब कल्ले बनने की अवस्था में आ जाती है तो 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति नाली की दर से यूरिया के रूप में छिड़क दी जाती है। फिर बालियां आने पर पुनः 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति नाली की दर से और छिड़क दी जाती है। एक महत्वपूर्ण ध्यान यह देना पड़ता है कि खेत में मृदा का क्षरण न हो और पानी का निकास दूसरे खेत में न हो। इससे उर्वरक की मात्रा बहकर दूसरे खेत में पहुँच जाती है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल उत्पादन का एक प्रमुख बिंदु है किस्मों का चुनाव। वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिस्थितियों व जलवायु के अनुरूप किस्में विकसित की हैं। मैदानी भागों हेतु जल्दी पकने वाली किस्में गोविंद, नरेंद्र धान 118, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, पंत शंकर धान 1 इत्यादि हैं। मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्में पंत धान 4, नरेंद्र धान 359, पंत धान 10, सरयू 52, PNR 381, पंत शंकर धान 3, पंत धान 18, PR 113, PR 114 इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त बासमती की किस्में जैसे टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती 1, बासमती 370, तरावड़ी बासमती, पंत सुगंध धान 15 किसानों के लिए उपलब्ध हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निचली ऊंचाई वाले भागों के लिए साकेत 4, गोविंद, प्रसाद, पंत धान 18 तथा मध्यम ऊंचाई वाले भागों के लिए VL धान 85, विवेक धान 82, VL धान 39, पंत धान 6, VL धान 81 जल्दी पकने वाली किस्में हैं। मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों में VL धान 16, VL धान 61, VL धान 65 व विवेक धान 62 प्रमुख हैं। वैज्ञानिक खेती का दूसरा प्रमुख बिंदु है फसलों को कीट व्याधियों से सुरक्षा। कीट व रोग फसल को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। किसानों के लिए यह भी अनिवार्य है कि इनकी पहचान कर इनका उचित निदान करें। धान की फसल पर लगने वाले प्रमुख कीट हैं पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सूंडी पीली रंग की काया और भूरे रंग की सिर वाली होती है। यह पत्तियों को मोड़कर नलीनुमा आकृति बना देती है और उसी के अंदर रहकर पत्ती के हरे पदार्थ को खा जाती है। जिस प्रकार सूढ़ियाँ 20-25 दिन के जीवन काल में कई पत्तियाँ खा जाती हैं, खेत में इसके लक्षण दिखाई देने पर कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 50 घुलनशील पाउडर 12 ग्राम दवा प्रति नाली की दर से 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा हानिकारक कीट है गंधीबग। इसकी पहचान इसके दुर्गंध से लगाई जा सकती है। इसकी रोकथाम हेतु मेलाथियोन 5%, फेलवल रेट 0.4%, धूल 400 ग्राम प्रति नाली के हिसाब से फसल में छिड़काव या बुरकाव करें। तीसरा हानिकारक कीट है तना भेदक। इसकी गिटार मुख्य तने को भेदकर नुकसान पहुंचाती है, तना सूख जाता है। इसके नियंत्रण हेतु कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G 500 ग्राम प्रति नाली की दर से बुरकाव या पिप्रोनिल 5 दवा की 20 मिलीलीटर का छिड़काव करें। चौथा प्रमुख हानिकारक कीट होता है बाली काटने वाला। इसकी सूढ़ियाँ नुकसानदेह होती हैं। इसका प्रकोप दिखाई देने पर इंडोसल्फान या क्यूनाल्फॉस की 30 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। कीटों के अलावा व्याधियों का प्रकोप भी फसल में काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। धान की प्रमुख व्याधियाँ हैं झोंका या ब्लास्ट, भूरा धब्बा, खैरा रोग, पर्णसत सड़न, अंगमारी या ब्लाइट आदि। झोंका या ब्लास्ट रोग धान की ज़्यादा आता है, इससे पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बोना चाहिए। खड़ी फसल में रोग निदान हेतु 20 ग्राम कार्बेंडाजम 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। भूरे धब्बे वाली बीमारी खाद व उर्वरकों के कम प्रयोग से भी आती है, अतः फास्फोरस व पोटास वाली खादों का प्रयोग समुचित मात्रा में करें। खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर डाइथेन M45 दवा 30 ग्राम को 15 लीटर पानी में घोलकर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण आती है, अतः 0.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति नाली की दर से मिलाना चाहिए। खड़ी फसल पर लक्षण प्रकट होने पर 100 ग्राम जिंक सल्फेट को 50 ग्राम बुझे हुए चूने में मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली के हिसाब से छिड़काव करें। पर्णछत रोग में पर्णछत छड़ने लगते हैं, इसके लक्षण दिखाई देने पर 20 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। अंगमारी या ब्लास्ट आने पर फसल की पत्तियां झुलसी सी लगती हैं।
1: सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती, अभी किसान भाई इस विषय पर डॉक्टर पूरन सिंह मेहता से ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज का खेती की बातें कार्यक्रम अब सम्पन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब एक नज़र हमारे इस सभा के शेष और हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में दोपहर 2:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मंदाकिनी पर। अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्किन कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे रविवार स्तरीय संगीत सभा में पंडित हर शंकर भट्टाचार्य का सितार वादन आप सुनेंगे। हमारे ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर हम आपको सुनवाएंगे। इसमें आज के कलाकार होंगे लक्ष्मी प्रसाद और साथ ही युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:15, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं और राष्ट्र मंडल दिवस। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा अंत्योदय अन्न योजना, मिशन लाइफ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुमावनी और

कुछ भक्ति रचनाएं भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 6:41 पर। आज के कलाकार इसमें होंगे रूप कुमार राठौर और जसविंदर नरूला। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में आज आप सुनेंगे प्रमुख खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर गौरव वर्मा से जानकारी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कार्के। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8:00।

रात्रि 9:15 पर प्रेम संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुनेंगे और सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:30। यदि रूपरेखा हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

एक ही फनकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक ही फनकार प्रोग्राम में हमारी आज की फनकार है मशहूर अदाकारा मंदाकिनी। श्रोताओं, जब भी मंदाकिनी का नाम हमारे कानों में पड़ता है तो हम सभी को बरबस ही याद आ जाता है उनका मासूम चेहरा, उनकी सुंदर आंखें और उनका चांदी जैसा कोरा रंग, और याद आ जाता है पहाड़ों की खूबसूरती बयां करता ये मधुर गीत। तो आगाज करते हैं आज के एक ही फनकार प्रोग्राम का राम तेरी गंगा मैली फिल्म के इस मधुर गीत के साथ।

श्रद्धाओं, मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई वर्ष 1963 को मेरठ में हुआ था। इनका वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ है। मंदाकिनी का फिल्मी नाम मंदाकिनी है। वर्ष 1985 में राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आर के बैनर तले श्रद्धाओं, राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मुख्य भूमिका में मंदाकिनी को लिया गया और उनके इस किरदार को हर किसी ने नोटिस किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मंदाकिनी को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। फिल्म के दो दृश्यों में उनके बेहद ही खूबसूरती से फिल्माए गए सीन दिखाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस डांस, आदित्य पंचोली के साथ कहाँ है कानून और गोविंदा के साथ प्यार करके देखो जैसी कुछ और सफल फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी पहली फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं पाई। श्रोतो, यहाँ पर सुनते हैं मंदाकिनी की फिल्म जीते हैं शान से फिल्म का ये गीत। इस फिल्म में मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सिल्वर स्क्रीन को साझा किया था।

0: आपको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जोली जोली, जोली का दिल तुम पे आया जोली।

दोस्तों, मंदाकिनी की मुख्य फिल्में हैं मेरे साथी, राम तेरी गंगा मैली, सिंहासन, जीवा, आग और शोला, जाल, मजलूम, अपने अपने, लोहा, प्यार करके देखो, डांस डांस, हवालात, परम धर्म, प्यार मोहब्बत, शूरवीर कमांडो, हम तो चले परदेस, मालामाल, अग्नि, नाग नागिन, आखिरी बाजी, जंगबाज, नया खून, शेषनाग, दुश्मन और जोरदार। श्रोता, मंदाकिनी ने हिंदी सिनेमा में कम ही फिल्में की। भले ही उनकी फिल्में बेहद ज़्यादा ना चली पाई हों, लेकिन हर फिल्म में मंदाकिनी अपनी खूबसूरती से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। वर्ष 1996 के बाद मंदाकिनी ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। आइए यहाँ पर सुनते हैं उनकी फिल्म अग्नि का ये गीत।

अग्नि फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का एक ही फनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त रेखा सेवरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त रेखा सलूरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मशहूर शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की याद का दिन है, यानी कि आज है उनकी पुण्यतिथि। तो आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उनके लिखे चंद फिल्मी गीत। प्रोग्राम का पहला नगमा है अभिमान फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म वर्ष 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में यदि किसी गीतकार ने 6 दशकों तक अपनी शायरी की खुशबू बिखेरी तो वो थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। उनका वास्तविक नाम असरार उल हसन खां था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इनका जन्म मजरूह हुआ था। मजरूह ने आरंभ में ही यूनानी चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उनकी रूह शायरी में बसती थी। आगे चलकर वे हिंदी फिल्म संगीत के ऐसे गीतकार बने जिन्होंने प्रेम, विरह, जीवन दर्शन और युवा संवेदनाओं को शब्दों में बयां कर अमर कर दिया। उनकी लेखनी का एक बेहद ही खूबसूरत नमूना है दस्तक फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी के गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि उनमें संवेदनाओं की गहराई भी थी। वे सरल शब्दों में गहरी बात कहने की कला जानते थे। उनका गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे या ओ मेरे दिल की चैन, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा या पहला नशा पहला खुमार, इतने खूबसूरत गीत आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने समय के साथ स्वयं को बदला और हर पीढ़ी के लिए यादगार गीत लिखे।

श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी ने सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, ओपी नैयर, आनंद मिलिंद और जतिन ललित जैसे कई बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी लेखनी हर शैली में सफल रही, चाहे रोमांटिक गीत हो, गजलें हों या युवा उत्साह से भरे गीत हो। मजरूह सुल्तानपुरी केवल गीतकार नहीं थे, बल्कि वे भावनाओं के जादूगर थे। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के दिल में बसे हुए हैं और आने वाले समय में भी उनकी शायरी सिनेमा प्रेमियों को प्रेरित करती रहेगी। श्रोताओं, मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से निकला ये बेहद ही दिल छूने वाला गीत अब आपके लिए।

श्रोताओं, अपने 6 दशकों के करियर में मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। उन्हें वर्ष 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया और वर्ष 1993 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार आजीवन उनके हिंदी सिनेमा में सहयोग के लिए उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए उनको दिया गया। वर्ष 1980 और वर्ष 1990 के दशक में उनका अधिकांश काम आनंद मिलिंद के साथ रहा। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में हैं कयामत से कयामत तक, लाल दुपट्टा मलमल का, लव और दहक। उन्होंने जतिन ललित की फिल्मों में जो जीता वही सिकंदर और उनकी पहली फिल्म यारा दिलदारा के लिए भी गीत लिखे। श्रोताओं, इस वक्त सुनते हैं वो गीत जिस गीत के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को उनके पूरे फिल्मी करियर का इकलौता फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया, फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत गीत।

मजरू सुल्तानपुरी की कुछ मुख्य फिल्में हैं, यारा दिलदारा, तुम मेरी हो, घर हो तो ऐसा, दौलत की जंग, आई मिलन की रात, जो जीता वही सिकंदर, दस्तूर, गुरुदेव, एक लड़का एक लड़की, दिल आशना है, लुटेरे, अंदाज अपना अपना, कभी हाँ कभी ना, बाजी, अकेले हम अकेले तुम, गुड्डू, खामोशी द म्यूजिकल, दरार, युग पुरुष और जानम समझा करो। इसी के साथ क्या कहना, हम तो मोहब्बत करेगा, पुकार और मुझे मेरी बीवी से बचाओ, ये फिल्में उनके फिल्मों के लेखने के फहरिस्त में शामिल हैं। श्रोताओं, वर्ष 1946 में शाहजहां फिल्म से जहां एक और मजरूह साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, वहीं उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई वर्ष 2001 में प्रदर्शित शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 1, 2 का 4, जो उनके इस दुनिया से जाने के एक साल बाद रिलीज की गई।

श्रोताओं, मधु सुल्तानपुरी ने लिखा कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनके लिखे हुए गीतों के साथ। लगभग 6 दशक तक उन्होंने गीत लिखे और इतने गीत लिखे कि हर सिचुएशन पे उनके गीत हमें याद आते हैं। वर्ष 2000 को 24 मई के दिन मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा और पीछे छोड़ गए अपने लिखे हुए खूबसूरत नगमे, जो हमेशा ये ज़माना सुनेगा, हमेशा गुनगुनाएगा और हमेशा याद करेगा।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बंडलबाज फिल्म के इसी नगमे के साथ आज के सदाबहार फिल्म में गीत कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सेलूरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली सभा में शाम 5 हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है। अब आप सुनेंगे समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 104,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध

0: में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शेल्स पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद व साथी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, लक्ष्मी प्रसाद व साथी के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10:00 रविवासरी संगीत सभा, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होगा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं और राष्ट्रमंडल दिवस विषयों पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे घटनाक्रम और इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी अंत्योदय अन्न योजना, मिशन लाइफ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए विषयों पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि प्रसारित होगा शाम 7:15 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रमुख खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गौरव वर्मा और संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कार्की। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं संध्या 6:41 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम सबरस में और रात्रि 9:30 पर। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल शाम 5:00 राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। प्रातः 7:20 और सुबह 10:30 पर प्रादेशिक समाचार, दोपहर 1:05 पर पुनः उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विचार बिंदु कार्यक्रम में आप सुनेंगे राष्ट्रीय समन्वय की प्रतीक गंगा पर विचार प्रातः 6:05 पर। आज की बात का समय रहता है प्रातः 6:40। देशगान आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम विविधा हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ का 104वां भाग। महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 12:30। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मानसिक स्वास्थ्य की ना करें अनदेखी विषय पर। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1291वीं कड़ी। किसान भाई खेती की बातें कार्यक्रम सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों हेतु समेकित कृषि प्रणाली विषय पर पूर्व प्रसारित वार्ता, वार्ताकार होंगे डॉक्टर शेर सिंह। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व फुटबॉल दिवस और सुकन्या समृद्धि।

योजना विषयों पर। ग्राम जगत का समय रहता है शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी परंपरागत कृषि विकास योजना विषय पर और चर्चा की जाएगी गुबरेला कीट नियंत्रण विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जैविक खादों का प्रयोग करते कृषक मदन मोहन गिरी से प्रमोद कुमार पांडे की क्षेत्र संकलित बातचीत। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में। दोपहर 2 बजे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:41 पर। शास्त्र संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30 और 11:30 पर। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं 10:05 पर कार्यक्रम सबरंग में। दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सबरस में और रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में। 10:35 पर कार्यक्रम सुरबहार में। 11:00 कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम मेरी पसंद में। 2:45 पर एक ही फनकार में। 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों में। 7:40 और रात्रि 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। 5:15 हुए हैं। अभी युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नई नई बातें और कुछ खास पेशकश। साथियों, आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम आज की बात में बातचीत करेंगे अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। उसके बाद एआई के बढ़ते प्रभाव पर वेब डेवलपर मंगल से हमारी खास बातचीत, आगे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अंत में इतिहास के पन्नों से आप जानेंगे आज का इतिहास। और बातचीत व जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहेगा, जहां हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। साथियों, हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनका उद्देश्य स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सहयोग और अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ये छात्रवृत्तियाँ मुख्यतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से संचालित होती हैं, जहाँ एकीकृत पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के जरिए राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है। NSP पर यह स्पष्ट है कि मंत्रालय की तीन केंद्रीय योजनाएं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस ऑनलाइन आवेदन सत्यापन के साथ संचालित होती हैं। कुछ प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की बात करें तो इनमें से एक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसके लिए आवेदन व सत्यापन NSP पर होते हैं। अगली योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें उच्च माध्यमिक

यानी कि कक्षा 11 से शोध स्तर अर्थात पीएचडी के अध्ययन के लिए ट्यूशन या कोर्स शुल्क, मेंटेनेंस अलाउंस और अन्य मदों में सहायता मिलती है। इसके लिए भी आवेदन संस्थान व राज्य सत्यापन और राशि की डीबीटी प्रक्रिया, ये सभी एनएसपी के माध्यम से होते हैं। इसके अलावा मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के अंतर्गत AICTE, UGC, मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट जैसे पेशेवर व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन या कोर्स शुल्क और मेंटेनेंस अलाउंस का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 12 तक की मेधावी व आर्थिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन MAEF द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही दोस्तों, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कई वर्षों से नई उड़ान जैसी पहलों और फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता विकास को भी बढ़ावा दिया है। और साथियों, बात करें राज्यों की अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के बारे में, तो कई राज्य अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अपनी अपनी पूरक छात्रवृत्तियां भी चलाते हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकारों की छात्रवृत्तियां शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करके समान अवसर उपलब्ध कराती हैं। सही योजना चुनने, समय सीमा का पालन करने और आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी से लाभार्थी, विशेषकर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, अपनी शैक्षिक यात्रा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। यह उन देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश राष्ट्रमंडल दिवस को मार्च के दूसरे सोमवार को मनाते हैं, जबकि भारत सहित कुछ अन्य देशों में इसे 24 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की बात में फिलहाल इतना ही, और कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

0: साथियों, वर्तमान समय में एआई का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी पढ़ाई, हमारे काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि हमारी सोचने की शैली को भी प्रभावित कर रहा है। एआई ने जहाँ कई काम आसान किए हैं, वहीं इससे जुड़े कुछ सवाल और चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। इन्हीं पहलुओं पर बातचीत के लिए आइए सुनते हैं हमारे युवा श्रोता के साथ हमारी ये भेंट वार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान मंगल सिंह लटवाल, जो एक युवा वेब डेवलपर हैं और आज हमारी वार्ता का विषय है एआई का बढ़ता प्रभाव। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो मंगल, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में बताइए कि एआई आखिर है क्या?
1: एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीन इंसानों की तरह सोचने और समझने का काम करती है। जैसे मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी या फेस अनलॉक, ये सभी एआई के उदाहरण हैं।
0: तो मंगल, अगर हम बात करें एआई के प्रभाव की, तो आजकल के समय में एआई का प्रभाव सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है?
1: आजकल एआई का प्रभाव मोस्टली शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सोशल मीडिया और वेब डेवलपमेंट, बिजनेस, लगभग सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसका मेनली रीजन है कि यह काम को तेज और आसान बना रहा है।
0: जी बिल्कुल। तो मंगल, एक वेब डेवलपर होने के नाते आपने एआई का क्या प्रभाव महसूस किया है?
1: पहले कोडिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग में काफी समय लगता था, लेकिन अब एआई टूल की मदद से कई काम जल्दी हो जाते हैं। जैसे एआई एरर ढूंढना, डिजाइन आइडिया देना और कोडिंग में मदद करना।
0: जी, तो आपके अनुसार मंगल, एआई जो है वो युवाओं के लिए किस तरह से अवसर लेकर आया है?
1: आज युवा घर बैठे ऑनलाइन स्किल सीख सकता है। एआई और टेक्नोलॉजी

0: के क्षेत्र में नए करियर ऑप्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों और गांव के युवाओं के लिए एक यह बड़ा अवसर है।
1: निश्चित रूप से मंगल, जैसे कि आपने बताया कि छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के लिए भी यह वास्तव में एक बहुत बड़ा अवसर है। तो मंगल, अगर हम बात करें भविष्य की, तो क्या AI भविष्य में नौकरियों को प्रभावित कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, कुछ ट्रेडिशनल जॉब प्रभावित हो सकती है, लेकिन साथ ही नई जॉब भी बनेगी। जो युवा टेक्नोलॉजी और नई स्किल सीखेंगे उनके लिए भविष्य में अच्छे अवसर रहेंगे।
1: बिल्कुल। तो मंगल, जब AI के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो आपके अनुसार क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, हो सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह AI का गलत इस्तेमाल भी संभव है, जैसे फेक इमेजेस, मिस इन्फॉर्मेशन और चीटिंग जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। इसलिए AI का जिम्मेदारी से उपयोग बहुत जरूरी है।
1: जी, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई। अगर हम बात करें हमारे युवा साथियों की, तो आज के युवाओं को AI के बारे में क्या सीखना चाहिए और उसका इस्तेमाल उन्हें कैसे करना चाहिए?
0: युवाओं को टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। AI को लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल करें, शॉर्टकट की तरह नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग और ह्यूमन स्किल हमेशा जरूरी रहेगी।
1: जी, अगर मंगल कोई युवा AI या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो वह उसकी शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: आज YouTube फ्री कोर्सेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत रिसोर्सेज उपलब्ध है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रैक्टिकल सीखते जाइए। लगातार प्रैक्टिस जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने सही बात हमारे श्रोताओं को बताई। तो मंगल, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि AI एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। अगर युवा इसका सही दिशा में उपयोग करे तो यह सीखने, आगे बढ़ने और नए अवसर पाने का एक बेहतरीन माध्यम बन सकता है। लेकिन हमें तकनीक के साथ अपनी सोच, क्रिएटिविटी और मानवीय मूल्यों को भी हमेशा बनाए रखना चाहिए। AI का सही उपयोग ही हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है।
1: निश्चित रूप से मंगल, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि AI आज के समय की एक महत्वपूर्ण तकनीक बन चुकी है। यह हमारे जीवन को आसान भी बना रही है और नए अवसर भी दे रही है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी और सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। और मंगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे AI का बढ़ता प्रभाव विषय पर वेब डेवलपर मंगल से हमारी भेंट वार्ता। कार्यक्रम में आइए अब बात करते हैं घटनाक्रम की, जिसमें आप जानेंगे बीते सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, हालिया आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं के मामले में अग्रणी राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र ने कुल 215 केंद्रीय सरकारी परियोजना हासिल की हैं, जिनका अनुमानित निवेश मूल्य लगभग 5.5 ट्रिलियन रुपये है। इसमें उत्तर प्रदेश 180 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है तथा आंध्र प्रदेश 141 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में लद्दाख सरकार ने लद्दाख हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। यह निर्णय 1 जून 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत करना और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन प्रमुख आर्थिक विकास को तेज करना है। इस सुधार से लद्दाख भर में 1,257 पंजीकृत होटल और गेस्ट हाउस को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें 1,078 संपत्तियां लेह में और 179 कारगिल में हैं। साथियों, अगली खबर की बात करें तो हाल ही में 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पाल पुनूरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। इससे पहले मई 2019 में नेपाल की तरफ से एक ही दिन में

223 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे थे। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले के प्रबंधन के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग में भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तीर्थयात्रियों की वास्तविक समय सहायता के लिए AI समाधान को लागू करना शामिल है। इस साझेदारी में इंदौर में एक AI नवाचार केंद्र स्थापित करना और 10,000 से अधिक AI डेवलपर्स को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। तो दोस्तों, घटनाक्रम में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में अब एक समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज का इतिहास।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज यानी 24 मई का इतिहास। दोस्तों, 24 मई सन 1824 में अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध में रंगून और बर्मा पर कब्जा किया था। साल 1830 में 24 मई को ही अमेरिका में पहली बार यात्री रेल रोड सेवा की शुरुआत हुई। 24 मई वर्ष 1951 में आज ही के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। इसी के साथ इतिहास में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था। आइए जानते हैं। 24 मई सन 2000 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी का निधन हुआ था। साल 1999 में 24 मई को ही भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक व पहलवान गुरु हनुमान का निधन हुआ था। 24 मई सन 1543 में प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन हुआ था। अब एक नज़र आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर प्रसिद्धि हासिल की। 24 मई साल 1955 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का जन्म हुआ था। साल 1954 में 24 मई को ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था और 24 मई वर्ष 1896 को जन्म हुआ था करतार सिंह सराभा का, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। तो दोस्तों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले ये खासम खास गीत आप सबके लिए।

तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के प्रश्न का। जी हाँ साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम से जुड़ा आज का प्रश्न। लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और सही उत्तर बताने वाले श्रोता साथियों के नाम हम साझा कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1957 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें भेजा है वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल, सुषमा और मायरा सुरोशे ने। गुजरात गांधीग्राम से सही उत्तर भेजा है प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने। धर्मेंद्र, कपिल और पूजा ने भोपालगढ़ राजस्थान से हमें सही उत्तर भेजा है। ग्राम नागर कोहरा से

बबलू जामुन बेबी आराध्या ने, गुमला झारखंड से एस एम जावेद ने, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर अजय देव और कमलेश साहू ने, और सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें सही उत्तर भेजा है दीपेश पूनम ज्योति और शिवांश ने। और दोस्तों इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, भारत तथा कुछ अन्य देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, भारत तथा कुछ अन्य देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के अंक में आपको बताएंगे, और तब तक आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर हमें ज़रूर भेजें हमारे कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। और दोस्तों इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी मुलाकात युववाणी कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम में बैठ आप लोगों को मनपसंद कुमाऊनी और गढ़वाल लोकगीतों फरमाइशी कार्यक्रम बुरासो जगह सुना लीजिए आप लोगों के लिए इंतजार में। श्रोताओं बुरास कार्यक्रम को शुरू करने पहली रोजे की चार आप लोगों दगे कन्नू विचार बातचीत और बात करनू अंत्योदय अन्न योजना। श्रोताओं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना देशा गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना थी। यह योजना मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के भूख और कुपोषण में राहत देने और उनके खाद्य सुरक्षा प्रदान करने से। श्रोताओं यह योजना अंतर्गत पात्र परिवारों के हर महीने निर्धारित मात्रा में गेहूँ और चंगो बहुत रियायती दरों में उपलब्ध कराई जाएंगी। पहली यह योजना में पील राशन कार्ड के माध्यम लाभ दी जाती जबकि अब यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित करी जाने। श्रोताओं यह योजना का लाभ मुख्य रूप गरीब मजदूरन के भूमिहीन लघु और सीमांत किसानन के वृद्धजनन के विधवा महिलाओं के और असंगठित क्षेत्र श्रमिकन के मिलो। श्रोताओं अंत्योदय अन्न योजना देशा लाखों गरीब परिवारों के खाद्यान्न की चिंता पर राहत दिला रखे। यह न केवल देश में भुखमरी कम हरे बल्कि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए सहार मिल रहा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में यह योजना सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण माध्यम बन गए। तो श्रोताओं आज आवश्यकता से कि यह योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पारदर्शिता दगाड़ पूजो और एक जन जागरूकता बढ़ाई जो ताकि पहले ज़रूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा पर वंचित न रहो।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में अगेन आप लोगों के सुनोनु मिशन लाइफ हैक अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं विषय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगाड़ा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फार्मेसी अधिकारी श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी दगाड़ राजेंद्र सिंह विस्तृत क्षेत्र संकलित बात सिंह।
2: बताओ, आज के दौर में स्वस्थ रहना हर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बदलती जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच अपनाकर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी संदर्भ में आज क्षेत्र संकलित बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फार्मेसी अधिकारी श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जो हमारे साथ स्वस्थ जीवन शैली विषय पर बातचीत कर रहे हैं। कुंजवाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद जी।
2: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि स्वस्थ जीवन शैली क्या है।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य के लमगड़ा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत फार्मेसी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि बीजी ने बहुत ही ज्वलंत और गंभीर विषय पे आज चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया है, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के इस दौर में हमारा खान पान, हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा देखा जाए तो मॉडर्न हो चुकी है। तो उसी पे हमको कई चीजों पे आपको बताना चाहूंगा कि नियमित तरीके से हम कैसे अपनी जीवन दिनचर्या को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारा दिनचर्या का एक समय सारणी बननी अति आवश्यक है। हमारे प्रातःकाल में उठने का जो समय है वो प्रातःकाल होना चाहिए। तत्पश्चात जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर कि लोग सुबह नाश्तों में जंक फूड जैसे ब्रेड बटर है, मैगी है, इन कई चीजों का सेवन करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा गैप करते हुए अपने जो हमारा नाश्ते का समय है उसमें थोड़ा सा पोषण युक्त चीजों को उसमें लिया जाए। उसके पश्चात जो भी हमारी दिनचर्या, चाहे हम जॉब करते हैं या हम चाहे हम विद्यार्थी हैं या हम किसी भी क्षेत्र में जो भी हमारा कार्य है उसको हम संपादित करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो दिन में हमारा भोजन होना चाहिए वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। उसमें सभी जितने भी पोषक चीजें हैं, चाहे वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, ये सभी चीजें हमको लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जो जल का सेवन हमने करना चाहिए और ये कई सारी चीजें हैं जिनसे हम एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं।
2: तो कुंजवाल जी, आज के समय में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना क्यों जरूरी हो गया है?
3: देखिए बीजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अभी इस समय जो समय चक्र चल रहा है ये बहुत ही आधुनिक है, क्योंकि आदमी के पास आप देखिए समय की बहुत कमी। आदमी एकदम से किसी भी चीज को बहुत जल्दी से प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो सबसे पहले जो खिलवाड़ हो रहा है वो अपने खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा आधुनिकताएं आप देख रहे हैं हमारे आसपास, क्योंकि कलयुग अर्थात मशीनों का युग चल रहा है, तो आदमी उसमें अपने को स्टेब्लिश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इतना ज्यादा वो आगे को निकल रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहा है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से निवेदन है कि सर्वप्रथम हमको अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना अति आवश्यक है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, लंबा जीवित रहेंगे, तभी हम अपने सभी गोलों को जीवन में अचीव करते हुए जाएंगे।
2: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो कुंजवाल जी, बात करते हैं संतुलित आहार की, तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है?
3: बीजी भोजन और एक हम कहते हैं जिसको स्वस्थ भोजन, ऐसा भोजन जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अब भोजन का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो सबकी अपनी अपनी रुचि है। कोई आदमी शुद्ध शाकाहारी है, कोई आदमी मांसाहारी है और कोई सर्वाहारी है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ये सबको अधिकार है। तो लेकिन जो भी हमारा

0: भोजन है। यदि हम शाकाहारी हैं तो उसमें भी हमने को देखना है कि हमारा जो भोजन है उसमें हमारी सभी चीजें, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, प्रोटीन्स की मात्रा, वसा की मात्रा, आपके शरीर में ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी मात्रा, और पर्याप्त पानी की मात्रा जिसको मैं अभी पहले भी कहा है, और विटामिन्स की मात्रा, ये सब चीजें बिल्कुल पर्याप्त होनी चाहिए। और आजकल जैसे आप भी देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मोटे अनाज पे बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो यहाँ पे मडुआ है और आपके जो दालें होती हैं, सोयाबीन है, ये अधिकांश मात्रा में मिलती है जिसमें अच्छा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दूध बहुत अच्छा पहाड़ों में उपलब्ध रहता है, दूध से बनी जो भी आइटम्स होते हैं वो हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन चीजों पर हमको अपना फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो हमारे मौसमी फल हैं, जैसे अगर अभी हम बात करें तो काफल आप सिंपल सा भी इस सीजन में ले सकते हैं, बहुत सिट्रिक फ्रूट है। उसके बाद खुमानी आ जाती है, पुलम है, आड़ू है, केला है, ये ऐसे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति के बजट में भी शामिल हो सकते। तो हम इन सब चीजों को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, शरीर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, ऋतुचर्या और दिनचर्या का अनुपालन करते हुए हमको अपना आहार लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात। तो कुंजवाल जी, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम या योग का क्या महत्व है?
0: देखिए बीर जी, अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारी जो शारीरिक संरचना है जिसको एक उस शक्ति ने निर्माण करके बनाया है, तो वो देखिए एक ऐसी मशीन है, आप कल्पना कीजिए कि जिसके हर एक अंग का एक अपना विभिन्न एक अलग अलग कार्य है। जैसे हम किसी भी मशीन को देखते हैं तो मशीन की क्या होती है, आपके हर कल पुर्जे का अलग अलग कार्य होता है और हर चीज वो उसका रिजल्ट देती है। तो उसी प्रकार जो सृष्टि के विधाता ने जो हमारा मानव शरीर बनाया है, तो उस शरीर में भी प्रत्येक अंगों का, प्रत्येक अंग तंत्रों का, सबका एक अपना अलग अलग कार्य है। तो उसी के लिए क्या है कि जैसे ही, जैसे हमारे आपने आयुर्वेद में कई पुराणों में कई चीजों में इसमें है कि जो हमारा ब्रह्मचर्य है जीवन, उसके बाद हम जब प्रातःकाल उठते हैं हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद उठने के बाद कम से कम पहले तो टहलने जाइए, दौड़ने जाइए। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है तो आप जहां पर हैं अपने कमरे में ही या अपने बालकनी में, अपने छत में, आप वहीं पे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये कई ऐसे आसन हैं जो आपको बिल्कुल एकदम आपके दिन की शुरुआत को बहुत आपको एकदम से एनर्जी देते हैं। आपके सारे के सारे जितने भी हमारे बौद्धिक से लेके सभी अंग धीरे धीरे धीरे धीरे अपने, क्योंकि उन्हें दिन भर बहुत सारा काम करना है, तो उसके लिए वो एकदम से तैयार होना स्टार्ट करते हैं। और जब हम एक नियमित व्यायाम करते हैं, नियमित हमारा आहार रहता है, नियमित कार्यशैली रहती है, तो शरीर का जो मशीनरी का जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन की आयु है वो थोड़ा और उसमें अच्छा सा विस्तार हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह की हम जब हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत भरपूर मात्रा होती है जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे दिमाग के जितने भी हमारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है।
1: जी जी, कहने का मतलब है स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित व्यायाम और योग बहुत महत्वपूर्ण है।
0: अवश्य, बिल्कुल, बहुत ज्यादा आवश्यक है।
1: कुंजवाल जी, कहा जाता है कि अनिद्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए पर्याप्त नींद लेना कितना आवश्यक है?
0: बीजी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से ये बताना भी चाहूंगा, और आजकल हम जैसा देखते भी हैं हमारे अस्पताल में या हम जब स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि जहां पे इंसोमेनिया, बच्चों को नींद आने के अभी से इसी, मतलब आप ये मान के चलिए कि कक्षा 9, 10, 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं या उससे थोड़ी सी ऊपर की पीढ़ी है जिनकी उम्र अभी 40 के आसपास हो रही है, तो ये कई ऐसे केसेस हमारे लगातार अस्पताल में भी आते हैं और हमारे पास भी जब हम आंगनवाड़ी स्कूल में विजिट करने के लिए बच्चों को देखने के लिए जाते हैं तो बच्चे भी हमसे कहते हैं कि सर हमको अभी से इंसोमेनिया की शिकायत हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो अब ये देखिए ना कि ऐसा जो हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि हम अनिद्रा की ओर जा रहे हैं, और जबकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम, क्योंकि देखिए दिन भर 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में हम लगातार कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की एक जो मेडिकल सर्वे के अनुसार, जो WHO के हिसाब से या जो आयुर्वेद के हिसाब से सभी का जो एक संकलन निकला है कि स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 6 से 8 घंटे की निंद्रा लेनी चाहिए। अब उस निंद्रा को देखिए कैसे कई कई सारी चीजें क्या कर रही हैं, जो बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर निंद्रा नहीं आएगी तो हमारा अगला दिन या हमारी जो आगे की जीवन शैली है उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: कुंजवाल जी, अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में कई लोग तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो ज्यादा तनाव और भाग दौड़ से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: देखिए बीर जी, ज्यादा तनाव और ज्यादा दौड़ भाग से जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि देखिए तनाव क्या करता है, व्यक्ति को मानसिक रूप से धीरे धीरे अशक्त करता चला जाता है। और जो आप दौड़ भाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि

0: हम इस पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पे अभी भी मतलब, तो यहाँ पे अगर हमारा नियमित आहार अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारे शरीर में वाइटामिन B12 की कमी हो जाए, हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हमारे उसमें हो सकती है, हमारे आयरन की डेफिशिएंसी हमको हो सकती है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिससे कि जो जहां तक का हमारा जीवन चक्र होना चाहिए था, जो हमारी जितनी आयु हम गेन कर सकते थे हम वहां तक गेन ना कर पाए। लेकिन ये है कि अगर हम तनाव से रहित होंगे और हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल संयम होगी, हम संतुलित भोजन ले रहे हैं, स्वस्थ निद्रा ले रहे हैं, तो इनसे क्या होगा कि जितना तनाव कम होगा उतनी हमारी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक ये जो हमारा जीवन है ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सही बात। तो कुंजवाल जी, जैसा कि आप राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो आजकल के डिजिटल युग में मोबाइल फोन और टीवी का अधिक उपयोग किया जा रहा है, तो इन उपयोगों से बाल स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है?
0: देखिए बीर जी, कुछ चीजें क्या है, जीवन की आवश्यकताएं होती हैं और कभी कभी क्या हो सकता है कि आवश्यकताएं ही जीवन पे बहुत ज्यादा हावी होने लग जाती, वो हमारी आदतों में शुमार होने लग जाती है और हम उस चीज के धीरे धीरे आदि होने लग जाते हैं। क्योंकि विज्ञान किसी भी चीज का जब निर्माण करता है तो वो उसका निर्माण होता है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जो अभी हम देख रहे हैं, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे बच्चों वाली पीढ़ी है, ये धीरे धीरे, मतलब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी तो मतलब ये मान के चलिए कि एक साल का बच्चा भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। हमने बहुत ज्यादा देखा है और हम कहते भी हैं और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से कहते भी हैं कि सभी माताएं अपने बच्चों को, हमने देखा है अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो माँ उसके आगे से मोबाइल फोन रख लेती है, उनके आगे से कार्टून लगा देती है, तो बच्चे का ध्यान कहाँ है, मोबाइल में। लेकिन जो वो आहार ले रहा है उस आहार से उसको कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिमाग तो उसका पूरा मोबाइल में चल रहा है। या माताजी को कोई अपना घर का काम करना है तो बच्चों के सामने आगे से मोबाइल, उसमें बच्चों के सामने कोई स्टोरी या कोई कार्टून कुछ भी प्ले कर दिया तो बच्चे को पता है कि ये मोबाइल है, एक साल के बच्चे को वो उसका आदि हो जाता है। और उसी में जो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे जो अभी स्कूल गोइंग जो हमारे बच्चे हैं, ये भी बहुत ज्यादा उसके आदि हो चुके हैं क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम जो है, आप देखिए हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों पे रिफ्रैक्टिव एरर का इस समय जो दिक्कत आ रही है, नेत्र रोग संबंधी, उनका विजन कम हो जाना एकदम से और एकदम से मोबाइल न मिलने पे चिड़चिड़ा हो जाना। आए दिन आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कई घटनाओं की जिक्र देखते हैं कि फलाने बच्चे ने मोबाइल नहीं मिला तो ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो ये कई चीजें हैं जो मतलब इस युग में हमारे ऊपर हावी होना चाह रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी श्रोता लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को आप मोबाइल जितना कम से कम जो उसका कार्य है उस कार्य के लिए आप दीजिए, और 30 मिनट, जैसे इसको आपको लगता है कि इसको देखते हुए आधा घंटा हो गया है तो आप कम से कम 10 से 20 मिनट का ब्रेक कराइए। अगर उसको अर्जेंट काम भी है तो उसे बोला कोई बात नहीं बेटा, आधा घंटा आप कर लीजिए, देन फिर आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक कीजिए, फिर आप कीजिए। लगातार स्क्रीन पे बैठे रहने से हमारे नेत्रों में बहुत दिक्कत होती है और बहुत से बच्चे इसमें रिफ्रेक्टिव एरर की ओर को जा रहे हैं। अभी से बहुत कम उम्र में ही बच्चों को चश्मे लगने हो गए हैं जिससे उनका नंबर बढ़ जा रहा है, कई सारी चीजें। तो इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम ये चीजों को सभी इंटर कॉलेज के जितने भी हमारे अभी जो शैक्षिक सत्र जो चल रहा है इसमें हम प्रत्येक विद्यालयों में जाके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण जब करते हैं तो वहाँ पे हमको रिफ्रैक्टरी एरर के बच्चे बहुत ज्यादा मिलते हैं और ये इस समय पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत गंभीर ज्वलंत एक समस्या भी है कि छोटे छोटे बच्चों को हम रिफ्रैक्टरी एरर की ओर को जाते हुए देख रहे हैं।
1: जी जी, कहने का मतलब है मोबाइल फोन और टीवी का अधिक उपयोग केवल बाल स्वास्थ्य ही नहीं सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कुंजवाल जी, देखा जाए तो आजकल हमारी जो बाल पीढ़ी है वो जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और अगर युवा पीढ़ी को देखें तो नशे का सेवन कर रही है, तो इससे हमारा स्वास्थ्य या हमारी स्वस्थ जीवन शैली कितना प्रभावित हो रही है?
0: बिल्कुल बीर जी, ये भी जो आपका प्रश्न है बहुत ही अति संवेदनशीलता की श्रेणी में आता है क्योंकि देखिए चाहे भारत सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, इनके द्वारा हमारे जो बाल विकास विभाग है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, यहाँ पर जो बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है अगर आप देखते हैं तो इसमें मोटे अनाज को, दलिया है, खिचड़ी है, इन कई चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जो भारत सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेचुरल प्रोटीन्स के ऊपर जैसे दूध है, अंडा है, इन चीजों की ओर को बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चे जितने भी जंक फूड है, चाहे उसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स से लेके जितने भी ब्रेड्स वगैरह है, मैगी वगैरह है, या आप देखें तो चाउमीन, आजकल जो फास्ट फूड चाइनीज फास्ट फूड का बहुत ज्यादा चलन चला हुआ है, तो इसके लिए अब हमारे जितने भी डाइटिशियन हैं जो सभी बच्चों को एक तकनीकी सलाह देते हैं कि बच्चों आप सभी लोग जो घर में बना हुआ भोजन है वो सबसे स्वस्थ, आप भोजन में गेहूं का यूज कीजिए, आप चावल का यूज कीजिए, आप मडवे का यूज कीजिए, आप जो घर में निर्मित जो भी भोजन है वो आपका फोर्टिफाइड और जितने भी आपके जंक फूड है इनसे बहुत कई गुना बहुत बेहतर है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि क्योंकि

0: देखिए मनुष्य है और लालसा भी होती है, मन भी करता है, क्योंकि अब हम इससे बिल्कुल एकदम विरक्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर हफ्ता में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में कम से कम ये होना चाहिए कि हम 6 दिन अपने घर का खाना खाएं, और जो भी फास्ट फूड है ठीक, तो जितना उनका मतलब हफ्ते में कम से कम भोजन मतलब उसका उपयोग हमारे जीवन में हो सके वो हमको करना चाहिए, क्योंकि हम एकदम से किसी भी चीज को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये कि उसका उपयोग उतना ही करें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। क्योंकि आप देखते हैं जैसे जंक फूड से बहुत से बच्चों का एकदम से वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो मोटापे की ओर को शिकार हो जाते हैं, तो कई सारी चीजें हैं। तो इसलिए कि थोड़ा सा इसमें हमारे जितने भी अभिभावक हैं या जो भी हमारे माताएं हैं, तो इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहीं बहुत ज्यादा जंक फूड की ओर को तो नहीं जा रहा है, कहीं मेरा बच्चा पूरी डिपेंडेंसी उसकी जंक फूड की ओर को तो नहीं हो रही है। क्योंकि अभी तो आप ये मान के चलिए कि हम एक ग्रामीण के ऐसे परिवेश में है कि जहाँ पे अभी स्विगी और कई ज्यादा चीजें जो एकदम से आपने ऑर्डर किया और आपके घर आ गई, वो चीजें यहाँ पे नहीं है। आप महानगरों में देखिए, वहाँ तो जितने भी बड़ी बड़ी मतलब मेट्रो सिटी में लोग रहते हैं, एक फोन किया और पता चला जितना भी जंक फूड था आपके घर ही में आ गया, वो तो हफ्ते हफ्ते भर तक घर में खाना नहीं बनता है। तो दूसरा जो आपका प्रश्न है नशे की, हो ये भी आपका बहुत अच्छा हुआ है। इसमें भी देखिए हम सभी लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या हमारी उत्तराखंड पुलिस हो, समय समय पे जाकर स्कूलों में, गांवों में, पंचायतों में ये अभियान चलाया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जस्टिस, उसमें एक नोटिफिकेशन है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी तंबाकू उत्पाद, कोई भी नशे से संबंधित चीजें नहीं देनी है। दूसरा ये है कि स्कूल परिधि के कई मीटर की दूरी पे ये चीजें रहेंगी। तो ये कई सारे हमारे पास डिसीजंस हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। और हम प्रत्येक समाज के संभ्रांत व्यक्ति, हम सभी का एक दायित्व भी बनता है कि हम बच्चों को जब वो टीन एज में होते हैं, जब वो जानना चाहते हैं कि ये नशा क्या होता है, तो उस समय हम उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, उनके मन में जो जो भी उन्माद होता है या जो जो भी जानने की उत्सुकताएं होती है, उनका सही ढंग से उसका हम निवारण करें, उनको बताएं कि अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इससे हमें भविष्य में क्या हमको दुष्परिणाम सामने मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कई अभी जो एक लड़कपन की उम्र से अगर हम किसी चीज का नशा करते हैं तो वो नशा 50 साल की उम्र के पश्चात उसको बहुत बड़ा धोखा देने लग जाता है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में कर्क रोग, जिसको हम कैंसर कहते हैं, उसके कई सारे गंभीर मरीज एकदम से उनकी संख्या बढ़ने लग गई है। और आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत कम उम्र में ही नशे के कारण कभी वाहन दुर्घटना में, कभी कहीं पे किसी वजह से बिल्कुल अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुनः सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार अपनाइए, और जब वो उस दौर में खड़ा होता है तो आप उसके साथ एक दोस्त बन के उसको हर चीज के बारे में, चाहे वो कोई भी एजुकेशन है, आप उसको नशे के रिगार्डिंग एजुकेशन है, अगर हमारी बच्चियां हैं तो आप उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ये बिल्कुल बताइए।
1: जी बिल्कुल सही बात की। सर देखा जाए तो आजकल के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक रहते हैं। अगर उनमें कोई बीमारी की शुरुआत हो रही हो तो वह उसको अनदेखा कर देते हैं, उचित स्वास्थ्य जाँच नहीं कराते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि नियमित स्वास्थ्य जाँच स्वस्थ जीवन शैली के लिए कितना आवश्यक
0: है। जी नियमित स्वास्थ्य जाँच के द्वारा ही हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में उपस्थित जो भी हमारे अंग प्रणाली है वो कैसे कार्य कर रही है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य सुविधाएं सभी जगह पे मुहैया हैं और सरकार की ओर से कई स्वास्थ्य जांचें बिल्कुल एकदम से निःशुल्क की गई है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए नियमित जो हमारी नियमित स्वास्थ्य जाँच होती है, जैसे जिसमें हमारे ब्लड शुगर की जाँच है या हमारे RBC है, LFT KFT, हमारे किडनी की जांच है, इनकी नियमित जांचें अपनी करानी चाहिए, ताकि जिससे पता चल सके कि उनके जो हमारे शरीर के भीतर के अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, या अगर कोई लक्षण या कोई बीमारी अगर उनको होती तो उसका सही समय पे पता चल सके और उसका इलाज हो सके।
1: तो कुंजवाल जी, आप बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो हमारे समाज में आजकल मुख्य बाल स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं?
0: जी आजकल जो हमारे जो हम देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 32 बीमारियों को भारत सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें हम देखते हैं अधिकांश बच्चे जो है दंत रोग से ग्रसित है, अधिकांश बच्चों में जो रिफ्रेक्टिव अभी हम बात कर रहे थे नेत्र विकार हैं, कई बच्चे अभी जो हमारे यहाँ जन्मजात पैदा होते ही विकृत होते हैं, जिसको हम डिफेक्ट इन बर्थ कहते हैं। अब उसका जो कारण रहता है वो ये है कि सही समय पे गर्भवती माता द्वारा अपनी जांच न कराना, आयरन फॉलिक एसिड का सही से सेवन न करना, नियमित टीकाकरण न कराना, और जिसके कारण से क्या होते हैं डिफेक्ट के बच्चे हमारे अभी भी, हमारे जिले की अगर हम बात करें, ब्लॉक की हम बात करें, तो ये चीजें हमारे यहाँ पे आती है। उसके अलावा CHD आती एक बीमारी है जिसमें बच्चों में हृदय संबंधित विकार

0: उत्पन्न हो जाते हैं, ओटाइटिस मीडिया है, बच्चों के कान बहते हैं, तो ये करीब। और इसी में जो हमारी बड़ी बच्चियां हैं उनमें जो मासिक धर्म से संबंधित शिकायतें होती हैं, तो ये 32 बीमारियों को भारत सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है, तो जिसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी में हमको ये बच्चे मिलते ही मिलते हैं और हम अपने माध्यम से उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा या जिला अस्पताल या उससे फिर अलावा जो भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने जो जिन हॉस्पिटल्स को इम्प्लांट किया हुआ है उसके तहत उनका इलाज निःशुल्क करवाते हैं।
1: जी, तो कुंजवाल जी, अब जाते जाते आओ हमारे श्रोताओं को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को ऋतुचर्या, दिनचर्या और आयुर्वेद के आधार पर अपने जीवन शैली को अपनाना चाहिए और तनाव से जितना हम पीछे रह सके हमको वो प्रयास करने चाहिए। फिर एक बार से वही पुनः कि हमारे भोजन में संतुलित भोजन हो जिसमें हमारी मौसमी फल सब्जी हो, मोटे अनाज का सेवन है, नियमित व्यायाम है, उसके अलावा तंबाकू या इससे संबंधित वस्तुओं का हम त्याग करें, मद्यपान का भी बिल्कुल हम त्याग करें और पर्याप्त निद्रा का सेवन करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अपने जीवन में अपना के अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, जिससे इस समाज में हमारा बौद्धिक स्तर, हमारा शारीरिक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर बहुत अच्छा हो सके।
1: जी, कुंजवाल जी, कहने का मतलब है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से बचाव होता है और जीवन अधिक सुखी और ऊर्जावान बनता है।
0: जी बिल्कुल जी।
1: तो कुंजवाल जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमसे बातचीत की और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप लोगों ने सुनाए मिशन लाइफ के अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं विषय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फार्मेसी अधिकारी श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जुदगेड़ी राजेंद्र सिंह बिस्टे के क्षेत्र संकलित बातचीत। अब श्रोताओं, आप शुरू कर लूँ आप लोगों को मनपसंद कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों फरमाइशी कार्यक्रम बुरांस के। आज कार्यक्रम में हमन के पहल चिट्ठी आ रहे पहाड़ पानी जिला नैनीताल में बबलू कैराली, पप्पू कैराली और उनार परिवारजनों, और दूसरे चिट्ठी आ रहे ग्राम कांडे जैती अलमड़ में रमेश सिंह कन्याल, गौरव कन्याल, पारस कन्याल और उनार बहुत सारे दगड़वां। आपू सभी लोग सुनंताना दीवान कनवाल और रेखा विस्तार स्वर में गाई हुई यो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगिन फरमाई समन कार है। कमला देवी स्वर में गाई हुई यह कुमाऊनी राजूला मालूशाही अंश गीते फरमाइश करता हमारा श्रोता छन ग्राम ठाट लमगाड़ में आनंद सिंह, हीरा सिंह, विजय बिष्ट, अजय बिष्ट, हंसा देवी और सुमन देवी। यही गीत है कि फरमाइश आ रहे नैनतालवा आनंद सिंह, पंकज सिंह, दीवान सिंह, दीपा देवी और जानकी देवी। तो सुनो अपन फरमाइश हो यो राजूला मालूशाही अंश गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हमन का अगिन फरमाई सारे नरेंद्र सिंह नेगी और अनीता कंडारी स्वर में गाई हुई और गढ़वाल लोकगीते जय के फरमाइश करता हमारा श्रोता छन बागेश्वर में आनंद सिंह बिष्ट, हिमांशु बिष्ट, गंगा देवी और उनार परिवार वाल। यही गीत के सुनने की फरमाइश आ रहे नौगांव उत्तरकाशी में प्रेमा राणा, रचना राणा और उनार दगड़वा। तो सुनो अपन फरमाइश हो यो गढ़वाल लोकगीत।

श्रोताओं, यही गढ़वाल लोकगीता दगाड़ बुरांस कार्यक्रम के समाप्त करना बखत है गो। आप लोगों के बुरांस कार्यक्रम कस लागो या एक बार में आप लोग हमन के जरूर बताया और अपन सुझाव दिया और आप लोग ले अपन मनपसंद गीतन के सुनन चाहता तो हमन के अपन फरमाइश ले जरूर भेजिया। पत्राचार लीजिए, हमारे कार्यक्रम पत्र से कार्यक्रम बुरांस द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी अल्मोड़ा पिन कोड 2636 01 और मोबाइल संदेशक लीजिए, हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर से 94 11 10 11 22। श्रोताओं, आज राजेंद्र सिंह बिष्ट का आज्ञा दियो। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
1: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
2: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की और वन विभाग आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हल्द्वानी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है।
4: इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चार धाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित होगी।
3: मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को लेकर कहा कि इस समय प्रदेश के सामने पेयजल, वनाग्नि, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली आपूर्ति बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से गर्मी के इस सीजन को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहुंचकर माँ यमुना के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर का निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और लाखों श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 30 दिनों में 5,57,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 7,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक मत्था टेक चुके हैं। चमोली पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं।
5: कपाट भी खुल गए हैं, उसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार लोग पहुंच रहे हैं।

0: और अभी तक की यात्रा हमारी सकुशल रही है, अच्छी रही है लोगों की, और आगामी समय में और अधिक यात्रियों के बढ़ने की संभावना भी है।
1: वहीं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
2: कर रहे हैं और लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षित यात्रा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ स्लाइडिंग जोन जो इस यात्रा के क्षेत्र में है उनको चिन्हित किया गया है, वहां पर भी हमारी ड्यूटियां स्लाइडिंग जोन के दोनों ओर तैनात रहेंगी और प्रयास किया जा रहा है कि सुगम, सुचारू और सुरक्षित यात्रा को हम लोग संपन्न करवा सकें।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर में बांट दिया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
4: इस तारीख को गंगा दशहरा का प्रमुख स्नान है और पिछली सालों में भी हमने देखा कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु स्नान में आते हैं। उसी क्रम में आज हमने फोर्स की, जोनल सेक्टर ऑफिसर्स की और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करी है। पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में डिवाइड किया गया है और ड्यूटी तैनाती आदि कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी विस्तृत प्लान बनाया गया है, ताकि क्योंकि अभी चारधाम यात्रा भी हमारी गतिमान है, कई श्रद्धालु आगे ऋषिकेश और चारधाम की ओर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट ऐसा रहे कि श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा भी सुगमता से कर सके। देखिए, सभी मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मनसा देवी मंदिर हो, चंडी देवी मंदिर हो, दक्ष मंदिर, माया देवी मंदिर, जितने भी मंदिर हैं सभी जगह स्पेशली फोर्स को और मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है। अभी फोर्स ब्रीफिंग के बाद हमने ये भी देखा है कि और अधिक अधिकारियों की ड्यूटी और बढ़ाई जाएगी।
1: वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने एसपी सिटी अभय सिंह को मेले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया है।
5: 7 बजे से हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड की वजह से भी शहर में भीड़ है, तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है, इसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। तो प्रयास ये रहेगा जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको ट्रैफिक जाम या फिर घाटों पे भीड़ भाड़ की वजह से अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखेंगे। मनसा देवी में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, जल पुलिस और NDRF SDRF का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अतिरिक्त यातायात की विशेष योजना है और इसके अतिरिक्त ये जो हमारा जोन्स है इसमें मनसा देवी एक डिफरेंट जोन है और विशेष फोकस रहेगा उस पर, और पार्किंग के एंट्रीज है जहाँ पे प्रेशर बनता है वहाँ पे विशेष फोकस रहेगा। तो पूरी तरह गियर अप है, CCTV कैमरा और साथ में फायर सीजन चल रहा है, तो फायर सर्विस को भी इसमें अलर्ट किया गया है।
1: चमोली जिले में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि IOCL एवं HP के सेल्स अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पेट्रोल एवं डीजल के नियमित लोडर जिले में पहुंच रहे हैं और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जिलेवासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहा है और आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से जंगलों में आग से बचाव को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। वन विभाग अब वन क्षेत्रों, नाप खेतों और आसपास के क्षेत्रों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। वहीं संभागीय वन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि जिले में कई मामलों में आग नाप खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे नुकसान की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर नई टिहरी जिला मुख्यालय के आसपास स्थित बुढ़ोगी, चवालखेत और विभिन्न पिकनिक स्पॉट क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप कंचनगंगा में ग्लेशियर टूटने से यातायात एवं आम जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रशासन क्षेत्र का लगातार निगरानी कर रहा है। स्थिति पूर्णतः सामान्य है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि हिमस्खलन

0: से किसी प्रकार की जनहानि व संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की और वन विभाग आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत की इस पावन बेला का शुभारंभ कर रही हैं रूप कुमार राठौर के स्वर में इस मधुर भजन के साथ।

श्रोताओं, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं जसविंदर नरूला के स्वर में ये भक्ति वंदन।

श्रोताओं, जसविंदर नरूला किस्पर में इसी मधुर भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:50 होने को हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी धारादून बटन गडवली मा प्रादेशिक समाचार उगदगडी मी अंजली भट्ट। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली, सरकार चारधाम श्रद्धालुओं का खातिर सभी सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिवन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत सीमांत गांवों तक दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देने। वन विभाग वन क्षेत्रों और नाप खेतों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो लो। और अब तक 557,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों बद्रीनाथ का दर्शन करें। अब समाचार विस्तार बटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि श्रद्धालुओं तय सुरक्षित और सुगम यात्रा को अनुभव मिल सकूं, यहाँ का खातिर राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं तय सर्वोच्च प्राथमिकता दियोनी जी। हल्द्वानी मां पत्रकारों दगड़ी वार्ता कर दवा मुख्यमंत्री बोली, सरकार यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं तय लगातार मजबूत करनी चाहिए। श्री धामिन बोली कि एक महीना मां करीब 20.5 लाख श्रद्धालुओं चारधाम का दर्शन करें। मुख्यमंत्री बोली कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन का दगड़ी साहसिक पर्यटन तय भी बढ़ावा दियोनी चाहिए।
1: इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चार धाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित हो रही
0: है। चारधाम यात्रा तय सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनोन का खातिर पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया का निर्देशों पर जिला उप जिला अधिकारी श्रीनगरन यात्रा मार्गों और पार्किंग स्थलों को निरीक्षण केरी। टीमन, सिरोबगढ़, गोवा बीच, धारी देवी मंदिर, फरासू स्वीत, पॉलिटेक्निक हॉल, आवास विकास मैदान तथा एनआईटी मैदान को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उप जिला अधिकारी श्रीनगरन बोली कि चारधाम यात्रा पर ओण वाला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासनन की सर्वोच्च प्राथमिकता ची। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन श्रीनगर स्थित अल्केश्वर घाट पहुंचकर निर्माणाधीन विकास कार्यों को निरीक्षण केरी। ये दौरान उन बोली कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों का विकास का दगड़ी जन सुविधाओं तय सुदृढ़ बढ़ोन का खातिर निरंतर कार्य करनी चाहिए, जिसे क्षेत्रीय विकास तय भी गति मिलनी। उन बोली कि अल्केश्वर घाट धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का खातिर महत्वपूर्ण स्थल जी। यक विस्तृत की जान वाली सुविधाओं बटिन स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों तय लाभ मिलो। तखी खिरशु क्षेत्र का ग्राम प्रहरियों की बैठक मा श्री रावतन ग्राम प्रहरियों दगड़ी गांवों मा सक्रिय भूमिका निभाने वालों को आह्वान करी।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।

0: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहनन जिला सभागार गोपेश्वरमा जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने ये दौरान उन सर्वांगीण विकास विशेष रूप बटिन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी लेने ये दौरान उन बोली कि वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत जिला का सीमांत गाँव का खातिर बड़ी एवं दीर्घकालिक विकास योजनाओं तय प्रस्ताव तैयार करे जालो ताकि यो क्षेत्रों में आधारभूत असुविधाओं का दगड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था तय मजबूती मिल सकली उन स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों तय बढ़ावा दौड़ पर जोर देता हुआ बोली कि सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान तय संरक्षित करता हुआ उन तय आर्थिक रूप से सशक्त बनौन को आवश्यक ची 19 अप्रैल बटिन शुरू हुई चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ ली और लाखों श्रद्धालु दर्शन का खातिर उत्तराखंड पहुंचना छिन 30 दिनों में 5,57,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों बद्री विशाल का दर्शन करें जबकि हेमकुंड साहिब में 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं अब तक माथा टेकी ची तीर्थ यात्रा की बढ़ती रफ्तार दगड़ी यात्रा बटिन जुड़िया व्यवसायियों का चेहरों पर रौनक लौटी ची चमोली पुलिस प्रशासनन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का खातिर व्यापक इंतजाम करें जिला अधिकारी गौरव कुमारन बोली यूं दिनों बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की वृद्धि होनी चाहिए और आने वाला दिनों में यात्रा और अधिक चरम पर होली
1: लेग ऑफ कर रहे हैं और लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षित यात्रा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं कुछ स्लाइडिंग जोन जो इस यात्रा के क्षेत्र में है उनको चिन्हित किया गया है वहाँ पर भी हमारी ड्यूटियाँ स्लाइडिंग जोन के दोनों ओर तैनात रहेंगी और प्रयास किया जा रहा है कि सुगम सुचारू और सुरक्षित यात्रा को हम लोग संपन्न करवा सकें
0: उन बोली कि तीर्थ यात्रियों तक कोई असुविधा को सामना न कर पड़ू उनका खातिर सुरक्षा और सुविधा का सभी इंतजाम करे गए तखी पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बोली कि पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का खातिर बेहतर इंतजाम किए गए हैं
2: उसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में और अभी तक की यात्रा हमारी सकुशल रही है अच्छी रही है लोगों की और आगामी समय में और अधिक यात्रियों के बढ़ने की संभावना भी है
0: पौड़ी जिला में लगातार बड़ी वनाग्नि की घटनाओं तय गंभीरता से लियोंदा वन विभागन निगरानी और सतर्कता बढ़ी ली विभाग अब वन क्षेत्रों नाप खेतों और आसपास का क्षेत्रों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो लो संभागीय वन अधिकारी गढ़वाल महातिम यादवन बोली कि कई मामलों में आग जंगलों बटिन नाप खेतों और आबादी वाला क्षेत्रों तक पहुँचनी ची जैसे बड़ू नुकसान होने की संभावना बढ़ी रहती उन बोली कि वन क्षेत्रों में आग लगाने वाला और लापरवाही बरतने वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जोली
3: हमारी 34 क्रू स्टेशन और जितने भी हमारे फायर वॉचर जो हमने नियुक्त किए हैं और जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं वो दिन और रात अथक प्रयास से वनाग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है परंतु जो शरारती तत्व हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार से वन क्षेत्रों में आग लगाए जाने की घटनाएं की जा रही है इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी घटनाएं होंगी हम उसमें प्राथमिकी निश्चित तौर से दर्ज करवाएंगे
0: तखी नई टिहरी जिला मुख्यालय का आसपास स्थित बुडोगी चावल खेत और विभिन्न पिकनिक स्पॉट क्षेत्रों का जंगलों में भीषण आग से सामान्य जनजीवन प्रभावित होनुची और वन विभाग की टीम आग बुझोड़ में जुटी ची ग्रामीणों बते कि वनाग्नि का चलदा ऊते भारी परेशानियों को सामना करना पड़ दो
4: मैं नाम बिमला देवी ग्राम नंदगांव रेडे मार्सर पूरु जंगल खुकेगी ताकि डंगरू के घास नहीं रही आते ये था मैं सरकिया हमारे बच्चों के दूध होलू न गैस मिलना ना कुछ मिल लगा और जंगल में लाखड़ काटन लाखड़ भी फूकने लगे तथा अब के पर वकन खाण पीण भी कने बनो कुछ नहीं ना जंगल में तथा हम तो दमन बुले कि घास खोजी खाजी के वही चांद पर कुछ नहीं ना होने लगे
0: तखी प्रदेश में वन विभागन संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़े और लोगों बटिन जंगलों में आग से बचाव का खातिर सतर्कता बरतन की अपील

0: केरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोले, सरकार चारधाम श्रद्धालुओं का खातिर सभी सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिवन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत सीमांत गांवों तक दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देने। वन विभाग वन क्षेत्रों और नापखेतों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो लो। और अब तक 557,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों बद्रीनाथ का दर्शन करें। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी लोकगीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरराम भाट और साथियों के गाए इस राजस्थानी लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ढुंगराम भाट और साथियों का गाया ये राजस्थानी लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी लोकगीत। आइए कार्यक्रम के समापन में अब आपको सुनवाते हैं डूंगराम भाट और साथियों का गाया ये राजस्थानी लोकगीत।

0: श्रोताओं, डूंगराम भाट और साथियों के गाए इसी राजस्थानी लोकगीत के साथ हमारा आज का प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
2: कृषक भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कार्की कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान बंधुओं, पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ में उगाई जाने वाली धान्य फसलों में धान, मक्का, मंडुआ, मादीरा, सोयाबीन व अरहर प्रमुख है। यहाँ की जलवायु इन फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, परंतु बीमारियों के प्रकोप से उत्पादन में कमी भी यहाँ प्रमुख दिखाई देती है। विभिन्न फसलों की कई तरह की बीमारियों और कीड़ों द्वारा काफ़ी नुकसान इन सभी प्रकार की जो फसलें हैं उन पे देखा जाता है, और कभी कभी तो ये नुकसान 60-70% या उससे अधिक भी हो जाता है। फलस्वरूप जो किसान हैं हमारे, उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है प्रमुख खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। इस विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव वर्मा जी। डॉक्टर साहब, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, धान खरीफ की एक मुख्य फसल है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे रोग दिखाई देते हैं और उनकी क्या लक्षण है वो भी हम आपसे जाना चाहते हैं।
3: देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें धान एक मुख्य की फसल है, मुख्य फसल है, और इसमें मुख्यतः झोंका या प्रदवंश, जिसे हम ब्लास्ट रोग कहते हैं, भूरी चित्ती रोग व खैरा रोग, ये सभी रोग उसमें लगते हैं। इनमें झोंका रोग जो धान को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला जो एक रोग है, इस रोग के लक्षण पत्तियों में, तनों के घाटों में वह बालियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियां जो भूरे छोटे सुई की नोक के समान धब्बे बनाती है, जो बाद में नाव या आँख के आकार के दिखाई देते हैं। ये धब्बे किनारों में भूरे वह बीच में राख के रंग के भी होते हैं। रोग के ज्यादा प्रकोप होने से फसल जली हुई सी दिखाई पड़ती है। बालियों में रोग लगने पर बालियों के निचले भाग में बादामी या काले धब्बे बन जाते हैं, जिससे यह भाग सड़ने लगता है और पूरी बाली ही टूट जाती है। यह अवस्था धान में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली होती है।
2: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने इसके लक्षण हमारे कास बताए, तो आप हमें बताएं कि झोंका रोग की रोकथाम के लिए जो हमारे कासकार बंधु है वो कौन से उपाय अपना सकते हैं।
3: देखिए, इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी या सहनशील किस्मों को लगाना सर्वोत्तम उपाय है
2: जी।
3: इन किस्मों में वीएल धान 154, वीएल धान 221, वर्षा पर आधारित खेती के लिए एवं सिंचित अवस्था में रोपित धान के लिए वीएल धान 61, वीएल धान 62, वीएल धान 82, वीएल धान 85 आदि संशोधित की गई है। उर्वरक जो है, विशेषकर उसमें नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करना चाहिए तथा खेत के आसपास सफाई भी रखनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए जो कार्बंडाजिम अथवा एडिफेंसफोस नाम की जो दवा है, उसका 0.1% का छिड़काव करें। कम प्रकोप होने में मनकुजब का 75% WP दवा के 0.25% घोल का छिड़काव भी प्रभावी रहता है
2: जी।
3: जो ट्राइसाइक्लाजोल नामक जो दवाई है, उसकी 0.6 ग्राम मात्रा का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से रोग की उग्रता में काफी कमी आ जाती।
2: तो डॉक्टर साहब, एक भूरी जो पर्णचित्ती रोग है वो भी प्राय देख मिलता है, तो ऐसे में हमारे कासकार बंधु इस रोग को कैसे पहचाने और पहचान कर वो इसके बचाव भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: देखिए, जो भूरी चित्ती रोग है, रोग में जड़ को छोड़कर पौध के सभी भागों पर इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग में पत्तियों पर भूरे या बैंगनी रंग के छोटे बिंदु से लेकर अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। बालियों में दानों के ऊपर भी भूरे से काले धब्बे दिखाई देते हैं
2: जी।
3: रोगरोधी अवस्था अथवा रोगरोधी अथवा सहनशील किस्मों को लगाना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी से इस रोग की उग्रता बढ़ जाती है, अतः अनुमोदित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें।

0: स्वस्थ फसल में इस रोग का प्रकोप कम होता है।
1: जी
0: थिरम नामक दवाई की 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल में मैनकोजेब नाम का जो फफूंदी नाशक है उसकी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। खेत के खरपतवारों को नष्ट जरूर करें, इन पर रोग कारक पनपते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही धान की जो फसल है उस पर जो हमारे काशकार बंद हुए कैसे रोगों से नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं, मंडुआ है और मादिरा है कि खेती भी जो है वो काफ़ी देखी जाती है, तो क्या इन फसलों में भी कोई रोग लगता है?
0: हाँ, देखिए, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में मंडुआ व मादिरा की काफ़ी खेती होती है
1: जी,
0: तथा इनमें रोगों का प्रकोप अक्सर कम होता है। फिर भी मंडुवे में धान की तरह झोंका रोग मुख्य रोग है। इसका प्रकोप पत्तियों, डंठल तथा बालियों पर देखा जाता है। इससे उपज में अधिकतम हानि होती है।
1: डॉक्टर, जैसे कि आपने झोंका रोग के बारे में हमें बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि इसका जो नियंत्रण है वो हमारे काशकार बंधु कैसे करें इसमें?
0: देखिए, जो झोंका रोग है उसका नियंत्रण करने के लिए रोगरोधी किस्मों को लगाना चाहिए
1: जी।
0: जैसे कि VL मडुआ 324, VL मडुआ 315। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग ना करें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर पुष्पन अवस्था में कार्बेंडाजिम दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए
1: जी,
0: ताकि बालियों में रोग रोका जा सके।
1: तो डॉक्टर साहब, मादिरा में लगने वाला एक कंड रोग है, तो क्या इसका नियंत्रण जो है वो हम आपसे जानना चाहेंगे?
0: देखिए, जो मादिरा है उसका जो मुख्य रोग है वो कंड रोग है और इसको हम स्मट भी कहते हैं, जिससे पौधों की बालियों में कुछ दाने रोगी हो जाते हैं जो कि सामान्य दानों से बड़े दिखाई देते हैं और इसमें कवक के बीजाणु भर जाते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए जैसे कि PRJ1 बुआई से पहले कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, मक्का में कौन कौन से जो रोग हैं उनकी संभावना रहती है एवं रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे काशकार बंधु उन रोग को पहचान पाएं और साथ ही इसके बचाव के बारे में भी यदि आप कुछ।
0: देखिए, जो मक्का है उसमें जो प्रमुख रोग हैं जैसे कि टर्सिकम पर्ण झुलसा रोग, मेडिस पर्ण झुलसा रोग, धारी पत्ती वह पर्ण झुलसा, अंगमारी वह तना गलन रोग। इसमें जो टर्सिकम पर्ण झुलसा रोग है, सर्वप्रथम उसके बारे में चर्चा करते हैं
1: जी।
0: जैसे कि मक्के में पत्तियों पर झुलसा एक प्रमुख रोग है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर लंबे तथा कुछ अंडाकार नाव के आकार के पीले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में धूसर हो जाते हैं और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। अगर इसकी फसल मुक्त रखना है अगर इस बीमारी से, तो इसमें जून जुलाई के समय पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है फसल इससे रोग से, और रोगरोधी सहनशील प्रजातियों की समय से बुवाई करके इस रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन किस्मों में जैसे कि VL मक्का हाइब्रिड 9, VL QPM 9, VL मक्का हाइब्रिड 15, VL शंकर मक्का 25, VL शंकर मक्का 33 अथवा 45 अलग आदि प्रमुख जो हमारे किस्में हैं उनको बोना चाहिए। और बीज की बुवाई से पूर्व थिरम नामक दवाई की 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। इस दवा की रोकथाम हेतु मैनकोजेब की जो 0.25% की दर से उसका छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, उगल के पौधे में अब ये देखा जाता है कि अक्सर उसका तना जो है वो पतला होकर पौधा मुरझा जाता है, तो इस रोग के नियंत्रण के बारे में भी यदि कुछ।
0: देखिए, ये लक्षण कॉलर गलन रोग जिसे हम कॉलर रॉट भी कहते हैं उससे होते हैं
1: जी।
0: इस रोग में भूमि की सतह के पास भूरे से गहरे भूरे धब्बे बनते हैं। रोगाग्रस्त तने का पतला पड़ना वह पूरे पौधों का मुरझा जाना ये देखा जाता है। इसकी रोकथाम हेतु सेंसिल किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दवा की बात करें तो इसमें कार्बेंडाजिम नाम की दवा के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से बीजोपचार करें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर कॉलर भाग वाले भाग को कार्बेंडाजिम की 0.1% दवा से घोल बनाकर उसे तर भी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर जो खरीफ के सीजन में सोयाबीन भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बोई जाती, कभी कभी इसकी पत्तियों पर भी स्लेटी व भूरे रंग की जो चित्तियां हैं वो दिखाई देती, तो ये रोग।
0: देखिए, इस रोग को हम मेढक की आँख से रोग कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में अगर देखें तो फ्रॉग आई लीफ स्पॉट भी कहते हैं। पहाड़ों में सोयाबीन में यह रोग प्रमुखता देखा जाता है। पत्तियों पर वलयाकार एवं वृत्ताकार चित्तियां या कभी कभी कोणी पर्ण चित्ती बन जाती है। ऐसी चित्तियां मध्य से स्लेटी रंग की तथा किनारे से गहरी

0: होती है और मेढक की आंख जैसी प्रतीत भी होती है, इसलिए इस बीमारी को मेढक की आंख वाली पर्णचित्ती फ्रॉग आई लीफ स्पॉट भी कहते हैं। यह धब्बे तेजी से फैलते हैं एवं पत्तियों में छेद होते जाते हैं, वह समय से पहले ही पत्तियां गिर भी जाती हैं।
1: तो डॉक्टर, यदि हमारे कासकर बंधु को ये जो रोग है वो दिखाई देता है तो उसके नियंत्रण के लिए भी कुछ सुझाव आप हमारे कासकर बंधु को दें।
0: देखिए, इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें फसल चक्र व सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा फसल के अवशेषों को दबा देना चाहिए।
1: जी।
0: प्रतिरोधी या सहनशील किस्में जैसे कि वीएल सोया 47, वीएल सोया 63, वीएल सोया 65, वीएल सोया 67 आदि, इन सारी किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। थिरम नाम की जो फफूद नाशक है उसका 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम का या फिर मैनकोजेब का 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए।
1: मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में अरहर भी बोई जाती है, तो अरहर में भी मलानी रोग के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, तो हम बोलना चाहेंगे कि जो हमारे कासकर बंधु है उसको कैसे पहचाने और उसके नियंत्रण की विधि भी आपसे जानना।

0: में रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम का या फिर मैनकोजेब का 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में अरहर भी बोई जाती है, तो अरहर में भी मलानी रोग के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे काशकार बंधु है उसको कैसे पहचाने और उसके नियंत्रण की विधि भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, जो पौधे हैं, पौधों की निचली पत्तियाँ पीली होकर सूखने से दिखाई देती हैं और यह रोग ऊपर की तरफ बढ़कर पूरे पौध को सुखा देता है। यह पौधों में पानी वह अन्य तत्वों के संचार को रोक देता है। पौधों के निचले भाग में तने में खाल के नीचे गहरी भूरी कवक या धारियां दिखाई देती हैं एवं तने को फाड़कर देखा जाए तो भीतरी भाग भूरा सा दिखाई पड़ता है। इसके रोकथाम हेतु गर्मियों में गहरी जुताई करना आवश्यक है। रोगरोधी या सहनशील किस्में जैसे कि बीएल अरहर 1 के स्वस्थ बीज का उपयोग करें, पानी का समुचित निकास करें, उचित फसल चक्र वह बीजोपचार भी करें। रोगी पौधों को हटाकर नष्ट अवश्य करें। 2.5 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम या दोनों के मिश्रण जो एक एक भाग में लेकर इसे अथवा संयुक्त जो कवकनाशक है कार्बोक्सिन या थीरम के 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। अगर आपके पास जैविक नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरेडी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनम मौजूद है तो उसका 5 से 10 ग्राम पाउडर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने से ये समस्या दूर हो जाती है। देखो, जो टमाटर है उसके फलों की ये एक गंभीर समस्या है
1: जी।
0: फल सड़न रोग जिसे बकाई रोट भी कहते हैं, फलों में पीले भूरे रंग के संक्रमित छल्लेदार धब्बे बनते हुए आपको दिखाई देंगे
1: जी।
0: जो बढ़कर पूरे फल को ढक लेते हैं, वह फल सड़ने लगते हैं। इस रोग का रोगजनक कवक मिट्टी में लंबे समय तक तथा जीवित रहता है, अतः फसल बचाने के लिए साफ सुथरी खेती बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी पौधे वह फलों को नष्ट कर देना चाहिए, खेत में पानी नहीं जमा होने देना चाहिए तथा टमाटर के पौधों को लंबे डंडियों के सहारे खड़ा करना चाहिए। जमीन से करीब 6 से 9 इंच ऊपर तक की पत्तियों को तोड़ देना चाहिए, वह फल जमीन के संपर्क में ना आ पाए।
1: तो डॉक्टर साहब, अंत में कुछ सलाह हमारे काशकार बंधु को यदि आप देना चाहते।
0: देखिए, फसलों को रोग से बचाने के लिए सबसे उत्तम विधि रोगरोधी प्रजातियों को बोना होता है
1: जी।
0: क्योंकि इन किस्मों में रोग नहीं लग पाता है तथा इससे रासायनिक दवा का भी इस्तेमाल कम होता है। अगर हम देखें तो हमें किसानों को खेती करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रोगरोधी व सहनशील किस्मों का बोना, बीजों को बीजोपचार जरूर करना, फसलों में संशोधित उर्वरकों का प्रयोग करना, खेत में पानी की निकासी ना खड़े होना। देखिए, रासायनिक दवाओं को खरीदते समय उनके उपयोग की अंतिम तिथि जिसे एक्सपायरी डेट भी कहते हैं उसे जरूर देख लें एवं दवा का संशोधित मात्रा में ही प्रयोग करें। दवा का घोल बनाते समय 15 से 20 लीटर पानी प्रति नाली जमीन के हिसाब से प्रयोग करें तथा उसमें चिपकने वाले पदार्थ जैसे ट्रिटन या ट्रिपल की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में अवश्य मिलाएं। इससे हल्की बारिश होने पर भी दोबारा छिड़काव करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
1: कृषक बंधुओं, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने श्रोताओं आकाशवाणी अल्मोड़ा की ओर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कृषक बंधु, यदि आपको कृषि से संबंधित किसी भी अन्य विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें संस्थान की निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-1802311 पर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 तक संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन संख्या 263601। धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि, ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:40 हुए हैं। लीजिए, पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल धड़कने दो का ये गीत। आवाज़ है याशिता शर्मा, मनीष फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

खूबसूरत गीत। आवाज़ें हैं बेनी दयाल और शेफाली अलवरिस की। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और सरगम में बांधा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, फिल्म ये जवानी है दीवानी के इस खूबसूरत से गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में इस प्रस्तुति के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शुभा मुद्गल की आवाज में ये प्रस्तुति।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी। और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योग लिंडो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबी रिवॉक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कहीं ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप 4 के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की 4 टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर ले तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले, तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें जगाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अर्शीन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सधी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यानसेन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला, उमर जई और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने 2 ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
2: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
1: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हायुक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर मोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रही। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
4: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा। एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज़ पे फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही है अभी, गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
0: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महवीश।
5: जी
0: महवेश, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
5: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है।
0: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है। पुरुष हाई जंप से देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही हैं इस प्रतियोगिता से?
5: जी आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी है।
0: मैं भी ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रही थी?
5: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिरसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस्क एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर IPL का अंतिम लीग मुकाबला जारी है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा

0: सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक

पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Devangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue.

आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान का ये गीत। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष में सुनते हैं आज का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम है इज्जत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, फिल्म इज्जत के इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए, अब पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

श्रोताओं, चंदनदास की गाई इसी गज़ल के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध

0: प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA,